गुरबचनी सच नाम पतिना प्राणी राम भगत सुख पाई है गुरमुख हर हर मीठा लागे हर हर नाम समाइए रहाओ माया मोह विवर्ज समाए सतगुर भेटे मेल मिलाए नाम रतन निर्मोल खीरा ते तराता मेरा मन धीरा हौ मैं ममता रोग ना लागे राम भगत जम का भौ भागे जम जंदार ना लागे मोहे निर्मल नाम हृदय हर सोहे शब्द विचार पय निरंकारी गुरमत जागे दुरमत परहारी आंदिन जाग रहे लेवलाई जीवन मुक्त गत अंतर पाई अल्पत गुफा में रहे निरारे तस्कर पंच शब्द संघारे पार कर जाए ना मन डोलाए सहज निरंतर रहो सुमाए गुरमुख जाग रहे ओ तूता साध बैरागी तत परोता जो जग सूता मरे आवे जाए बिन गुर शब्द न सोझी पाए अनहद शब्द वजे दिन राती अविगत की गत गुरमुख जाती तो जानी जा शब्द पछानी एको रव रहे निर्बानी सुन समाध सहज मन राता तज हो लो लोभा एको जाता गुर चेले अपना मन मान्या नानक दूजा मेट समान्या राम कली महला पहला साहा गणे न करे विचार साहे ऊपर एक अंकार जिस गुर मिले सोई विद जाने गुरमत होए ता हुकम पछाने झूठ ना बोल पाडे सच कहिए हम मैं जाए शब्द कर लहिए रहाओ गण गण जो तक कांडी कीनी पढ़े सुनावे तत न चीनी सबसे ऊपर गुर शब्द विचार होर कथनी बदो न सगली चार नाभे तोभे पूछे सैला बिन हर राते मैलो मैला गर्भ निवार मिले प्रभ सारथ मुक्त प्राण जप हर किरतारथ वाचे वाद ना बेद विचार आप डुबे क्यों पितरा तारे घट घट ब्रह्म चीने जन कोय सतगुर मिले तो सोजी होए गणत गणिये सह सा दुख जिये गुर की शरण पवे सुख थिये कर अपराध शरण हम आया हर गुर हर भेटे पुरब कमाया गुर शरण न आइये ब्रह्म न पाइये भरम भुलाइये जन्म मरज आइये जमदर बाधो मरे बिकार ना हृदय नाम ना शब्द अचार एक पादे पंडित मिस्र कहावे दुबिधा राते महल ना पावे जिस गुर पर सादी नाम धार कोट मधे को जन आपार एक बुरा पला सच एक है बूझ ज्ञानी सत गुर की टेक है गुरमुख बिरली एको जानिया आवन जाना मेट समाणिया जिनके हृदय एक अंकार सर्वगुणी साचा विचार गुर के पाने कर्म कमावे नानक साचे साथ समावे राम कली महला पहला हठ निग्रह कर काया चीजे वर्त तपन कर मन नहीं पीजे राम नाम सर अवर ना पूजे गुर सेव माना हर जन संग कीजे जम जमदार जो है नहीं साके सरपन डस ना सके हर का रस पीजे वर्त तपन कर मन नहीं पीजे राम नाम सर अवर ना पूजे गुर सेव मना हर जन संग कीजे जम जमदार जो है नहीं साके डरपन डस ना सके हर का रस पीजे रहाओ वाद पड़े रागी जग पीजे त्रै गुण दिखिया जन्म मरी जय राम नाम बिन दुख सही जय चाड़स पवन सिंहासन पी जय न्यौली कर्म खट कर्म करी जय राम नाम बिन बेखा सास ली जय अंतर पंच अगन क्यों धीरज ती जय अंतर चोर क्यों साध लही जय गुरमुख होए काया गढ़ ली जय अंतर मैल तीरथ भरमी जय मन नहीं सूचा क्या सोच करी जय किरत पया दोस्त का कहो दी जय आन ना खाहे देही दुख दीजे बिन गुर ज्ञान तृप्त नहीं थीजे मनमुख जन्म जन्म मरी जय सतगुर पूछ संगत मन की मनमुख मनमुख खाहे देह ना दीजे बिन गुर ज्ञान तृप्त नहीं थीजे मनमुख जन्म जन्म मरी जय सतगुर पूछ संगत जन की जय मन हर राच नहीं जन्म मरी जय राम नाम बिन क्या कर्म की जय ऊंदर धूंदर पास्तरी जय तुर की सेवा राम रवि जय
नानक नाम मिले कृपा प्रभ की जय। राम कली महला पहला। अंतर उत्पुज अवर न कोई, जो कही है सो प्रभ ते होई। जुग है जुग अंतर साहिब सच सोई, उत्पत परलो अवर न कोई। ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर, जिन जपया तिन ही सुख पाया। हर कै नाम न लगे जाम तीर, रहाओ नाम रतन हीरा निर्मोल। साचा साहिब अमर अतोल, जेवा सूची साचा बोल। घर दर साचा ना ही रोल, इक बन मह बैसे डूगर स्थान। नाम विसार पचहे अभिमान, नाम बिना क्या ज्ञान ध्यान। गुरमुख पावे दर घै मान, हठ अहंकार करे नहीं पावे। पाठ पढ़े ले लोक सुनावे, तीरथ परमस ब्याद ना जावे। नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे ना रहाई। मनुआ डोले नर के पाई, जमपुर बादो लह सजाई। बिना वै जियो जल बल जाई, सिद्धा दिख के ते मुन देवा। हठ निग्रह तात पावहे त्रिप, हठ निग्रह ना त्रिप तावहे पेवा। शब्द विचार गहे गुर सेवा, मन तन निर्मल अभिमान पेवा। कर्म मिले पावे सच नाओ, तुम शरणागत रहो सुभाओ। तुम ते उपजो भक्ति पाओ, जप जापो गुरमुख हर नाओ। हम मैं गर्भ जाए मन पीने, झूठ ना पावस पाखंड कीने। बिन गुर शब्द नहीं घर बार, नानक गुरमुख तत बीचार। राम कली महला पहला, ज्यो आया त्यो जावे बौरे। ज्यो जन्मे त्यो मरण पया, ज्यो रस भोग किए तेता। दुख लागे नाम विसार भव जल पया, तन तन देखत गर्भ गया। कनक कामनी स्यो हेत वधाहे, की नाम विसार परम गया। रहाओ जत सत संजम सील ना, जत सत संजम सील ना राख्या। प्रेत पिंजर मह कासट पया, पुन दान इस नान ना संजम। सा संगत बिन बाद जया, लालच लागे नाम विसारियो। आवत जावत जन्म गया, जा जम ताए केस गह पक मारे। सुरत नहीं मुख काल गया, अहनस निंदा तात पराई। हृदय नाम न सर्व दया, बिन गुर शब्द न गत पत पावे। राम नाम बिन नरक गया, खिन मह वेश करे नटुआ। ज्यो मुहो पाप मह गलत गया, इत उत माया देख पसारी। मोह माया के मगन पया, करहे विकार विथार कनेरे। सुरत शब्द बिन परम पया, हूँ मैं रोग महा दुख लागा। गुरमत लेवो रोग गया, सुख संपत को आवत देखे। साकत मन अभिमान पया, जिसका एहो तन तन सो फिर लेवे। अंतर सह सह दुख पया, अंत काल किछ साथ ना चाले। जो दिसे सब तिसे मया, आद पुरख परम्पर सो प्रभ। हर नाम हृदय लै पार पया, मुए को रोवे किसे सुनावे। पै सागर असराल पया, देख कुटुंब मया, देख कुटुंब माया ग्रह मंदर। साकत जंजाल पराल पया, जा आए ता तिन्हें पठाए। चाले तिने बुलाए लया, जो किछ करना सो कर रहया। बख्शन हारे बख्श लया, जिन एह चाख्या राम रसायन। तिनकी संगत खोज पया, रिद सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया। मुक्त पदार्थ शरण पया, दुख सुख गुरमुख सम कर जाना। हरख सोग ते बिरकत बिरकत पया, आप मार गुरमुख हर पाए। नानक सहज समाए लया, राम दखनी महला पहला। जात सत संजम साच दृढ़ाया, सात शब्द रस लीना। मेरा गुरदयाल सदा रंग लीना, अहनस रह एक लिव लागी। साचे देख पतीना, रहाओ रह गगन पुर दृष्ट समैसर। अनहत शब्द रंगीना, सत बंध कुपीन पर पुर लीना। जेहवा रंग रसीना,
मिले गुर साचे जिन रच राचे किरत विचार पतीना। एक मह सर्व सर्व मह एका एह सतगुर देख दिखाई। जिन की ये खंड मंडल ब्रह्मंड सो प्रभ लखन ना जाई। दीपक ते दीपक परगास्या त्रिपवन जोत दिखाई। सच्चे तख्त सच महली बैठे निरपौ ताड़ी लाई। मोहे गया बैरागी जोगी घट घट किंगुरी वाई। नानक सरण प्रभु की छूटे सतगुर सच सखाई। राम कली महला पहला आओ हठ हस्त मड़ी घर छाया। तरण गगन कल तारी गुरमुख केती शब्द उधारी। संतो रहाओ ममता मार हो मैं सुख है त्रिपवन जोत तुम्हारी। मनसा मार मने मह राखे सतगुर शब्द विचारी। सिंझी सुरत अनाहद वाजे घट घट जोत तुम्हारी। पर पंच बेण तही मन राख्या ब्रह्म अगन परजारी। पंच तत् मिल अहनस दीपक निर्मल जोत अपारी। रव सस लौके एह तन किंगुरी वाजे शब्द निरारी। शिव नगरी मह आसन औध अवधु अलख अगम अपारी। काया नगरी एहो मन राजा पंच वसेह विचारी। शब्द रवै आसन कर राजा अदल करे गुणकारी। काल विकाल कहे कह बपुरे जीवत मुआ मन धारी। ब्रह्मा विष्णु महेश एक मूरत आपे करता कारी। काया सोध करे भव सागर आत्म तत् विचारी। गुर सेवा ते सदा सुख पाया अंतर शब्द रव्या गुणकारी। आपे मेल ले सो गुण दाता हूँ मैं तृष्णा मारी। त्रै गुण मेटे चौथे वर्ते एहा भगत निरारी। गुरमुख जोग शब्द आत्म चीने हृदय एक मुरारी। मनुआ अस्थिर शब्द राता एहा करनी सारी। वेद बाद नापा खंड अवधु गुरमुख शब्द विचारी। गुरमुख जोग कमावे अवधु जात सत शब्द विचारी। शब्द मरे मन मारे अवधु जोग जुगत विचारी। माया मोह भव जल है अवधु शब्द तरह कुलतारी। शब्द सूर जुग चारे अवधु बाणी भगत विचारी। एहो मन माया मोहया अवधु निकसे शब्द विचारी। आपे बक्से मेल मिलाए नानक सरण तुम्हारी। रामकली महला तीजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सर मैं दिया मुंद्रा कन्नी पाए जोगी खिंथा कर तू दया। आवन जान विभूत लाए जोगी ता तीन पवन जिन लया। ऐसी किंगुरी बजाए जोगी जित किंगुरी अनहद वाजे हर स्यो रह लिव लाए। रहाओ सत संतोख पत कर चोली जोगी अमृत नाम भुगत पाई। ध्यान ना कर ध्यान का कर डंडा जोगी सिंझी सुरत बजाई। मन दृढ़ कर आसन बैस जोगी ता तेरी कल्पना जाई। काया नगरी मह मंगन चढ़े जोगी ता नाम पल्ले पाई। इत किंगुरी ध्यान ना लागे जोगी ना सच पल्ले पाए। इत किंगुरी सांत ना आवे जोगी अभिमान ना विच हो जाए। पाओ पाओ दोए पत लाए जोगी एह शरीर कर डंडी। गुरमुख होवे ता तंती वाजे इन विद तृष्णा खंडी। हुकम बुझे सो जोगी कहिए एक त्यो चित लाए। सहसा टूटे निर्मल होवे जोग जुगत इव पाए। नदरी आवदा सब किछ बिनसे हर से ती चित लाए। सतगुर नाल तेरी भावनी लागे ता एह सोझी पाए। एह जोग न होवे जोगी जे कुटंब छोड़ पर भवन करे। ग्रह शरीर में हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लहे। एह जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया। अनेक जतन पेख करे जोगी रोग ना जाए गवाया। हर का नाम अवखद है जोगी जिसनो मन वसाए। गुरमुख होवे सोई बुझे जो जोग जुगत सो पाए। जोगे का मार्ग बिखम है जोगी जिसनो नदर करे सो पाए। अंतर बाहर एको वेखे विच हो भरम चुकाए। बिन बजाई किंगुरी वाजे जोगी सा किंगुरी बजाए। कह नानक मुक्त होवे जोगी साचे रहे समाए।
राम कली महला तीजा भगत खजाना गुरमुख जाता सतगुर बूझ बुझाई संतो गुरमुख दे वडियाई रहाओ सच रहो सदा सहज सुख उपजे काम क्रोध विच हो जाई आप छोड़ नाम लिव लागी ममता शब्द जलाई जिस ते उपजे तिस ते बिनसे अंते नाम सखाई सदा हजूर दूर नह देखो रचना जिन रचाई सच्चा शब्द रवै घट अंतर सच्चे स्यो लिव लाई सत संगत मह नाम निर्मोलक वड्डे भाग पाया जाई परम ना भूल हो सतगुर सेवो मन राखो इक ठाई बिन नावै सब भूली फिरदी बिरथा जन्म गवाई जोगी जुगत गवाई खंड है पाखंड जोग ना पाई शिव नगरी मैं आसन बैसे गुर तब दी जोग पाई धातुर बाजी शब्द निवारे नाम वसै मन आई एहो शरीर सरवर है संतो इसनान करे लिव लाई नाम इसनान करे सेजन निर्मल शब्दे मैल गवाई त्रै गुण अचेत नाम चेते नाही बिन नावै बिन सजाई ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै मूरत त्रिगुण परम पुलाई गुर प्रसादी त्रिकुटी छूटे चौथे पद लिव लाई पंडित पढ़े पढ़ वाद बखाने तिना बूझ ना पाई दिख्या माते भरम भुलाए उपदेश कहे किसकाई भगत जना की उत्तम बाणी जुग जुग रही समाई बाणी लागे सो गत पाए सब दे सच समाई काया नगरी सब दे खोजे नाम नम निध पाई मनसा मार मन सहज समाना बिन रसना उस्तत कराई लोइन देख रहे बिस्मादी चित अदिष्ट लगाई अदिष्ट सदा रह निरालम ज्योति ज्योत मिलाई ह गुरसाला ही सदा अपना जिन साची बूझ बुझाई नानक एक कह बेनंती नाभो गत पत पाई राम कली महला तीजा हर की पूजा दुलंब है संतो कहना कछु ना जाई संतो गुरमुख पूरा पाई नामो पूज कराई रहाओ हर बिन सब किछ मैला संतो क्या हो पूज चढ़ाई हर साचे पावै सा पूजा होवे भाणा मन वसाई पूजा करे सब लोक संतो मन मुख थाए न पाई शब्द मरै मन निर्मल संतो एह पूजा थाए पाई पवित्र पावन से जन साचे एक शब्द लाई बिन नावै होर पूज ना होवी परम भुली लोकाई गुरमुख आप पछाणै संतो हो राम नाम लिव लाई आपे निर्मल पूज कराए गुर शब्दी थाए पाई पूजा करे पर बिद नहीं जाने दूजे पाए मत लाई गुरमुख होवे सो पूजा जाने पाणा मन वसाई पाने ते सब सुख पावे संतो अंते नाम सखाई अपना आप ना पछाण है संतो कूड़ करे वड़े आई पाखंड की न जम नहीं छोड़े ले जासी पत गवाई जिने अंतर शब्द आप पछाने गत मित तिन ही पाई एहो मनुआ सुन समाद लगावे ज्योति ज्योत मिलाई सुन सुन गुरमुख नाम बखान है सत संगत मिलाई गुरमुख गावे आप गवावे गुरमुख गावे आप गवावे दर साचे शोभा पाई साची बाणी सच बखान सच नाम लिव लाई तै पंजन अत पाप ने खंजन मेरा प्रभ अंत सखाई सब किछ आपे आप वरतै नानक नाम वड्याई राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील अत अभिमानी मिल सब दे मैल उतारी संतो गुरमुख नाम निस्तारी सच्चा नाम वस्या कटे अंतर करते आप सवारी रहाओ पारस परसे फिर पारस होए हर जियो अपनी कृपा तारी एक भेख करे फिरे अभिमानी किन जुए बाजी हारी एक आंदिन भगत करे दिन राती राम नाम उर तारी आंदिन राते सहजे माते सहजे हो मैं मारी कै बिन भगत न होई कब ही पै पाए भगत सवारी माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत बिचारी आपे आप कराए करता आपे बख्श भंडारी तिस क्या गुणा का अंत ना पाया हो गावा शब्द बिचारी हर जियो जपी हर जियो साला ही विच हो आप निवारी
नाम पदार्थ गुर ते पाया अखुट सच्चे भंडारी अपने भगतां नूं आपे तुठा अपनी कृपा कर कल धारी तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गा गावन शब्द विचारी जियो पिंड सब किछ है तिसका आखण बिखम विचारी शब्द लगे से ही जन निस्तरे भौजल पार उतारी बिन हर साचे को पार ना पावे बुझे को विचारी जो तुर लिखिया सोई पया मिल हर शब्द सवारी काया कंचन शब्दे राती साचे नाए प्यारी काया अमृत रही पर पूरे पाइय शब्द विचारी जो प्रभ खोजे से ही पावे होर पूत मुए अहंकारी बादी बिन सहे सेवक सेवे गुर कहे प्यारी सो जोगी तत ज्ञान विचारे हों मैं तृष्णा मारी सतगुर दाता तिने पछाता जिसनों कृपा धारी जिसनों कृपा तुम्हारी सतगुर ना सेवे माया लागे डूब मुए अहंकारी जिचर अंदर शास्त्र चर सेवा कीचे जाए मिलिए राम मुरारी आंदिन जागत रहे दिन राती अपने प्रिय प्रीत प्यारी तन मन वारी वार कुमाई अपने गुर विटोह बलिहारी माया मोह बिंस जाएगा उभरे शब्द विचारी आप जगाए सेई जागे गुर कै शब्द विचारी नानक सेई मुए जे नाम ना चेते भगत जीवे विचारी राम कली महला तीजा नाम खजाना गुरते पाया तृप्त रहे आघाई संतोह गुरमुख मुक्त गत पाई एक नाम बसिया कटे अंतर पूरे की वड्याई रहाओ आपे करता आपे भुगता देदा रजक सबाई जो किछ करना सो कर रहया अवर न करना जाई आपे साजे श्रेष्ठ उपाय सिर सिर धंदै लाई जो किछ करना सो कर रहया अवर न करना जाई आपे साजे श्रेष्ठ उपाय सिर सिर धंदै लाई जिसे सरेब हो जा सुख पावो सतगुर मेल मिलाई अपना आप उपाय अलख न लखना जाई आपे मार जीवाले आपे तिस नो तिल न समाई एक दाते एक मंगते कीते आपे भगत कराई सेवड भागी जिनी एको जाता सच्चे रहे समाई आप स्वरूप सियाणा आपे कीमत कहन न जाई आपे दुख सुख पाए अंतर आपे परम पुलाई वड्डा दाता गुरमुख जाता निगुरी अंध फिरे लोकाई जिन्नी चाख्या तिना साध आया सतगुर बूझ बुझाई इकना नाभो आप पुलाए इकना गुरमुख दे बुझाई सदा सदा साला है संतो तिस्ती वड्डी वड्याई तिस बिन अवर न कोई राजा करत पावस बंत बनाई न्याओ तिसका है सद साचा बिरले हुक्म मनाई तिसनो पानी सदा त्यावो जिन गुरमुख बंत बनाई सतगुर भेटै सो जन सीझै जिस हिरदय नाम वसाई सच्चा आप सदा है साचा बाणी शब्द सुनाई नानक सुन वेख रहया विस्माद मेरा प्रभ रव्या स्रब थाई राम कली महला पंजमा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद किन्ही किया पर वित पसारा किन्ही किया पूजा बिस्थारा किन्ही निवल पयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे तेरा भरोसा प्यारे आन ना जाना वेसा रहाओ किन्ही ग्रह तज वन खंड पाया किन्ही मोन अवतूत सदाया कोई कहतो अनन भगौती मोहे दीन हर हर ओट लीती किन्ही कहया हो तीरथ वासी कोई अन ना तज भया उदासी किन्ही कवन सब धरती करया मोहे दीन हर हर दर परया किन्ही कहया मैं कुल्हे वड्याई किन्ही कहया बहब बहो पाई कोई कहे मैं तने पसारा मोहे दीन हर हर आधारा किन्ही कुगर नृत कराई किन्हू वर्त ने माला पाई किन्ही तिलक गोपी चंदन लाया मोहे दीन हर हर हर त्याया किन्ही सिद्ध बहु चेतक लाए किन्ही पेख बहु थाट बनाए किन्ही तंत मंत बहु खेवा मोहे दीन हर हर हर सेवा कोई चतुर कहावे पंडित को खट कर्म सहित
त्यो मंडित कोई करे आचार सुकरणी मोहे दीन हर हर हर सरणी सगले कर्म धर्म जुग सोधे बेना वै एहो मन ना प्रबोधे कहो नानक जो साध संग पाया बूझी तृष्णा महा सीत लाया राम कली महला पांजवा इस पानी ते जिन तू करया माटी काले देहुरा करया उक्त जोत लै सुरत परीख्या मात गर्भ में है जिन तू राख्या राखन हार समार जना सगले छोड़ बिचार मना रहाओ जिन दिए तुद बाप महतारी जिन दिए प्रात पुत हारी जिन दिए तुद बनिता अरमिता तिस ठाकुर को रख लेहो चीता जिन दिया तुद पवन अमोला जिन दिया तुद नीर निर्मोला जिन दिया तुद पावक बलना तिस ठाकुर की रहो मन सरना शक्ति अमृत जिन भोजन दिए अंतर थान ठहरावन को किए बसुदा कियो बर्तन बलना तिस ठाकुर के चित रख चरना पेखन को नेत्र सुनन को करना हस्त कमावन बासन रसना चरण को चरण चलन को सिर कीनो मेरा मानते से ठाकुर के पूजो पैरा अपवित्र पवित्र जिन तू करया सगल जोन में तू सिर तरया अब तू सीझ पावे नहीं सीझे कारज सवरे मन प्रभ त्याई जय इहा उहा एक ओही जात कात देखिए तत तत तो ही तिस सेवत मन आलस करे जिस विसरिय एक निमख ना सरे हम अपराधी निर्गुण यारे ना किछ सेवा ना कर मारे गुर बोहित वड भागी मिलिया नानक दास संग पाथर तरिया राम कली महला पंजवा काहू बिहावे रंग रस रूप काहू बिहावे माए बाप पूत काहू बिहावे राज मिल्ख वापारा संत बिहावे हर नाम अधारा रचना साच बनी सबका एक तनी रहाओ काहू बिहावे वेद अरबाद।

हर जन बिहावै नाम ध्याए, काहू बिहावै जोग तप पूजा, काहू रोग सोग परमीजा, काहू पवन तार जात बिहाए, संत बिहावै कीर्तन गाए, काहू बिहावै दिन रैन चालत, काहू बिहावै सो पिड़ मालत, काहू बिहावै बाल पड़ावत, संत बिहावै हर जस गावत, काहू बिहावै नट नाटिक नृत्य, काहू बिहावै जिया, काहू बिहावै जिया एह हिरते, काहू बिहावै राज मह डरते, संत बिहावै हर जस करते, काहू बिहावै मता मसूरत, काहू बिहावै सेवा जरूरत, काहू बिहावै सोदत जीवत, संत बिहावै हर रस पीवत, जित को लाया तित ही लगाना, ना को मूड नहीं को स्याना, कर कृपा जिस देवै नाओ, नानक ताकै बल बल जाओ, राम कली महला पांजवां, दावा अगन रहे हर बूट, मात गर्भ संकट ते छूट, जाका नाम सिमरत पौ जाए, तैसे संत जना राखै हर राय, ऐसे राखन हार दयाल, जात कत देखो तुम प्रतिपाल रहाओ, जल पीवत ज्यो तिखा मिटांत, धन बिगसै ग्रह आवत कांत, लोभी का तन प्राण आधार, त्यो हर जन हर हर नाम प्यार, किरसानी ज्यो राखै रखवाला, मात पिता दया ज्यो बाला, प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए, त्यो हर जन राखै कंठ लाए, ज्यो अंधले पेखत होए आनंद, गूंगा बक्त गावै बहु छंद, पिंगुल पर्वत परते पार, हर कै नाम सगलो धार, ज्यो पावक संग सीत को नास, ऐसे प्राचत संत संग विनाश, ज्यो साबुन कापर उजल होत, नाम जपत सब भ्रम पौ खोत, ज्यो चकवी सूरज की आस, ज्यो चात्रिक बूंद की प्यास, ज्यो पुरंक नाद कर्ण समाने, त्यो हर नाम हर जन्म ने सुखाने, तुमरी कृपा ते लागी प्रीत, दयाल पैता आए चीत, दया तारी तिन तारण हार, बंधन ते होई छुटकार, सभ्य थान देखे नैण अलोए, तिस बिन दूजा अवर ना कोए, भ्रम पै छूटे गुर प्रसाद, नानक पेख्यो सब विस्माद, राम कली महला पंजवां, जी जंत सब पेखी है, प्रभ सगल तुम्हारी धारना, एहो मन हर कै नाम उधारना, रहाओ खिन मैं थाप उथापे कुदरत, सब

भगत शरण जो आवे प्राणी तिस इहा उहा ना हारना सुख दुख इस मन की व्यथा तुम ही आगे सारना तू दाता सबना जिया का आपन किया पालना अनेक बार कोट जन ऊपर नानक वंझे वारना रामकली महला पंजवा अष्टपदी ओंकार सतगुर प्रसाद दर्शन भेटत पाप सब नासे हर स्यो दे मिलाई मेरा गुर परमेश्वर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते होए सखाई रहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत धूर मुख लाई पतित पुनीत किए खिन पीतर अज्ञान अंधेर मंझाई करण कारण समरथ स्वामी नानक तिस शरणाई बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए एक शब्द लिव लाई अंध कूप बिख्या ते काढ्यो सात शब्द बने आई जन्म मरण का सहसा चूका बाहुड़ कथु ना जाई कथु ना ताई नाम रसायन एहो मन राता अमृत पी तृपताई संत संग मिल कीर्तन गाया नह चल वस्या जाई पूरे गुर पूरी मत दीनी हर बिन आन ना पाई नाम निधान पाया वड भागी नानक नरक ना जाई काल सियाणप उक्त ना मेरी पूरे गुरु कमाई जप तप संजम सोच है सोई आपे करे कराई पुत्र कलत्र महाबिख्या मैं गुर साचे लाए तराई अपने जियत है आप संभाले आप लिए लड़ लाई साचा धर्म का बेड़ा बांध्या भवजल पार पवाई बेसुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई अकाल मूरत अजूनी संभो कल अंधकार दीपाई अंतर जामी जीवन का दाता देखत तृप्त अघाई एक अंकार निरंजन निरपौ सब जल थल रहे आसमाई भगत दान भगता को दीना हर नानक जाचे माई राम कली महला पंजवा श्लोक सिखो शब्द प्यारो जन्म मरण की टेक मुख उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक मन तन राता राम प्यारे हर प्रेम भगत बने आए बने आई संत हो सतगुर खेप निबाही संतो हर नाम लाहा दास को दिया सगली त्रिसन उलाही संतो रहाओ खोजत खोजत लाल इक पाया हर कीमत कहन ना जाई संत हो चरण कमल त्यो लागो ध्याना साचे दर्श समाई संत हो गुण गावत गावत भय निहाला हर सिमरत तृप्त अघाई संत हो आत्म राम रव्या सब अंतर कत आवै कत जाई संत हो आद जुगादी है पी होसी सब जिया का सुखदाई संत हो आप बेअंत अंत नहीं पाई है पूर रहया सब ठाई संतो मीत साजन माल जोबन सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो हो राम कली महला पंजवा मन बच क्रम राम नाम चितारी कुमन केर महा अत बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी रहाओ अंतर सुखा बाहर सुखा हर जप मलन पय दुस्तारी जिसते लागे तिन्हें निवारे प्रभ जियो अपनी कृपा तारी उधरे संत परे हर सरनी पच बिन से महा अहंकारी साधु संगत एहो फल पाया इक केवल नाम अधारी न कोई सूर न कोई हीना सब प्रगटी जोत तुम्हारी तुम सम्राथ कथ गोचर रव्या एक मुरारी कीमत कौन करे तेरी करते प्रभ अंत ना पारावारी नाम दान नानक वड्याई तेरिया संत जना रे नारी राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया सब दोता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विचारना अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गला सम्राट स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे करता तेरे सब किछ है जिस दे है सो पावे सदा सिफ सलाहा तेरी
नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसिया बाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सभ्य गवाइया, कर सां सुख मने आय वसिया, जिन इच्छा सभ्य पूजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो, जिस दिया एह वडियाइया, कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित घर थारिया, पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तुद जिन कौ से, नाम हर कह लागे, कह नानक तै सुख हुआ, तित घर अनहद वाजे, साची लिवै बिन देह नी माणी लिवै बाजो, क्या करे वेचारिया, तुद बाजो समरथ कोई नाही, कृपा कर बनवारिया, एस नौ होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया, कह नानक लिवै बाजो क्या करे वेचारिया, आनंद आनंद सबको कह आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किल विख कट्टे ज्ञान अंजन सारिया, अंदरो जिनका मुँह टुटा तिनका शब्द सच्चे सवारिया, कह नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया, बाबा जिसु देह सोई जन पावे पावे ता सोजन, देह जिसनो होर क्या करे वेचारिया, इक परम भूले फिर हे देह जिस एक नाम लाग सवारिया, गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना भाणा पावे, कह नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे, आवो संत प्यारो कथ की करह कहानी, करह कहानिया कथ केरी, कित द्वारे पाइए तन मन धन, सब सौप गुर को हुक्म मनिए पाइए, हुक्म मनहो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी, कह नानक सुनो संतो कथियो अकथ कहानी, ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया, चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया, एह माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया, माया ता मोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाइया, कुर्बान कीता तिसै विट हो जिन मोह मीठा लाया, कह नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, एहो कुटंब तुझे देखदा चलै नाही, तेरे नाले साथ तेरे चलै नाही, तिस नाल क्यों चित लाइए, ऐसा काम मूले ना कीचे जित अंत पछोताइए, सत गुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले, कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभालिया, गम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, अंतो ना पाया किने तेरा अपना आप तू जान है, जी जम सब खेल तेरा क्या को आख वखाण है, आखे ता वेखे सब तू है जिन जग तू पाया, कह नानक तू सदा गम है तेरा अंत ना पाया, सुर नर मुंजन अमृत खोज दे तू अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया, जियो जन सब तू दू पाए, इक वेख परसन आया, लाभ लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया, कह नानक जिसनो आप तुठा तेने अमृत गुर ते पाया, भगता की चाल निराली चाला निराली, भगता केरी बिखम मार्ग चलना, लाभ लोभ अहंकार ता जितरिसना बहुत नाही बोलना, खन्यो तिखी वाल हो निकी एत मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजया हर वासना समाणी, कह नानक चाल भगता जुगो जुग निराली, ज्यो तू चलाहे तिव चलै स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे जीव तू चलाहे तिव चलै, जिन्ना मार्ग पावे कर कृपा जिन नाम लाहे, से हर हर सदा ते आवहे, जिसनों कथा सुनाहे अपनी से गुरुद्वारे सुख पावहे, कह नानक सच्चे साहेब ज्यो पावै तिवै चलावहे, एहो सोहिला शब्द सुहावा, शब्द सुहावा सदा सोहिला सतगुरु सुनाया, एहो तिनकै मन वसिया जिन धुरो लिखिया आया, इक फिरे कनेरे करे।

जाए। मन धोवो शब्द लागो हर सिउ रहो चित लाए। कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै एहो सहसाई बजाए। जीहो मैले बाहरों निर्मल जीहो ता मैले तिनी जन्म जुए हारिया। एह तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो वे विसारिया। वेदा मह उत्तम सो सुनह नाही फिर जो बेतालिया। कह नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया। जीहो निर्मल बाहरों निर्मल बाहरों ता निर्मल जीहो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी। कूड़ की सोए पहुँचे नाही मनसा सत समाणी। जन्म रतन जिनी खटिया भले से बन जा रे। कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुर नाले। जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे ता सन्मुख सिख कोई। जी हो रहे गुर नाले गुर के चरण हृदय त्याए अंतरात्मा समाले। आप छड सदा रहे परणै गुर बिन अवर ना जाने कोई। कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए। जे को गुर ते वे मुख होवे बिन सतगुर मुक्त ना पावे। पावे मुक्त ना होर थे कोई पुछो विवेकी आ जाए। अनेक जूनी भर में आवे बिन सतगुर मुक्त ना पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए। कह नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त ना पाए। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी। बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। जिनको नदर कर्म हो वह हृदय तना समाणी। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जप हो सारंग पानी। कह नानक सदा गावो एह सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। कहते कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आंख वखाणी। हर हर नित करे रसना कहया कछु ना जानी। चित जिनका हिर लया माया बोलन पैरवाणी। कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ। सब सेती मन मिलिया सच्चा लाया पाओ। आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाए। कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ। सिर सख्त आप उपाय कह करता आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए आप वेखे गुरमुख किसे बुझाए। तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे एक सियो चित लाए। कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। सिमरित शास्त्र उन पाप विचार दे तत्ते सार ना जानी। तत्ते सार ना जानी गुरु बाजो तत्ते सार ना जानी। तेही गुणी संता भ्रम सुता सुत्या रहन बिहानी। गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वस्या। बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत् पाए जिसनो आन दिन हर लिव लागे। जागत रहन बिहानी माता के उदर मह प्रतिपाल करे सो क्यों मनो विसारी है। मनो क्यों विसारी है वरदाता जे अगर मैं आहार पहुँचावे। उसनों क्यों पह न सकी जिसनों अपनी लेव लावे अपनी लेवा पे लाए। गुरमुख सदा संभाली है। कह नानके वरदाता सो क्यों मनो विसारी है। जैसी अगन उधर मैं तैसी बाहर माया। माया अगन सभी को जही करते खेल रचाया। जाते स्वाणा था जमया परवार भला पाया। लिव छुटकी लगी तृष्णा माया अमर वरताया। एह माया जे थर विसरै मोह उपजै भाऊ दूजा लाया। कह नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिन्नी विचे माया पाया। हर आप अमुल कह मुल ना पाया जाए। मुल ना पाया जाए किसे विट हो रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुर जे मिले तिसनो सिर सौपिए विच हो आप जाए। जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आए। हर आप अमुल कह भाग तिना के नानका जिन हर पल्लै पाए। हर रास मेरी मन बन जारा हर रास मेरी मन बन जारा। सत गुर ते रास जानी हर हर नित जपिहो। जिहो लाहा खटिहो दिहाड़ी एहो धन तिना मिलिया जिन हर आपे पाणा। कह नानक हर रास मेरी मन हुआ बन जारा। ए रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास ना जाए। प्यास ना जाए होरत कितै जिचर हर रस पल्लै ना पाए। हर रस पाए पल्लै पिए हर रस बहुना तृष्णा लागै आए। एहो हर रस करमी पाइए सतगुर मिलै जैसे आए। कह नानक होर अनरस सब विसरे जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरिया हर तुम्हें जोत रखी तातु जग में आया। हर जोत रखी तुद विच तातु जग में है आया। हर आपे माता
आपे पिता जिन जियो पाए जगत दिखाया गुर प्रसादी बुझिया ता चलत।

0: चलत हुआ चलत नदरियाया कह नानक, श्रेष्ठ का मूल रचिया ज्योत राखी तातु जग में है आया। मन चाव भया प्रभ आगम सुनया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनया। हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापय, गुर चरण लागे दिन सभागे। आपना पिर जा पय अनहत बाणी, गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो। कह नानक प्रभ आप मिलिया, करण कारण जो गो, ए श्रीरा मेरिया इस जग में आय कह। क्या तुध कर्म कमाया के कर्म कमाया, तुध शरीरा जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना बसाया। गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया। कह नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर से चित लाया। ए नेत्रो मेरे हो हर तुम मैं, जो तरी हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई। नदरी हर निहालिया, एहो वे संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझा जा वेखा, हर एक है, हर बिन अवर ना कोई। कह नान कहे नेत्र अंध से, सतगुर मिलिए दिद दृष्ट होई। ए श्रवणो मेरे, साचा सुनना नो पठाए, साचा सुनना नो पठाए। शरीर लाए सुनो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया हुआ। रसना रस समाणी, साचा लख बिनानी, ताकि गत कही ना जाए। कह नानक अमृत नाम सुनो, पवित्र हो वो, साचे सुनन नो पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख के, वाजा पवन बजाया, बजाया वाजा पवन नौ द्वारे। प्रगट किए दसवा गुप्त रखाया, गुरुद्वारे लाए भावनी। इकना दसवा द्वार दिखाया, तह अनेक रूप नाओ नमने दे, तिस दा अंत न जाई पाया। कह नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख के, वाजा पवन बजाया। एहो साचा सोहिला, साचा घर गावो, गावो तब सोहिला घर साचा। जिथे सदा सच त्यावे, सचो त्यावे, जा तुद भावे। गुरमुख जिना बुझावे, एहो सच सबना का खसम है, जिस बक्से सो जान पावे। कह नानक सच सोहिला, सचै घर गावे। आनंद सुनो वड भागियो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी, सच्ची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे। गुरते जानी सुनते पुनीत, कहते पवित सतगुर रहिया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे मुंदाव, अनहद तूरे मुंदावनी। राम कली मह साध एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जगदाता सोए भगत बछल। त्यो लोए जियो गुर शब्द समावे, अवर ना जाने कोए जियो। अबरो ना जाने शब्द गुर के, एक नाम ते आवहे। प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावहे। आया हकारा चलन वारा, हर ना राम नाम समाया। जग अमर टल तोल ठाकुर, भक्त ते हर पाया। हर पाणा गुर पया, हर पाणा गुर पाया, गुर जावे हर प्रभ पास। जियो सतगुर करे हर पह, बेनती मेरी पैज रखो अरदास। जियो पैज रखो हर जनो, केरी हर देहो नाम निरंजनो। अंत चल दिया होए बेली, जमदूत काल निखंजनो। सतगुरु की बेनती पाई, हर प्रभ सुनी अरदास। जियो हर धार कृपा, सतगुर मिलाया। धन धन कह साबास, जियो मेरे सुख मेरे सिख सुनो। पुत भाई हो मेरे, हर भाणा आओ मैं पास। जियो हर भाणा गुर पाया, मेरा हर प्रभ करे साबास। जियो भक्त सतगुर पुरख सोई, जिस हर प्रभ भाणा पावे। आनंद अनहद वजे वाजे, हर आप गल मेलावे। तुसी पुत भाई परवार, मेरा मन वेखो कर निर्जास। जियो तुर लिखिया परवाना, फिरे नाही गुर जाए, हर प्रभ पास। जियो सतगुर भाणे अपने, बह परवार सदाया। मत मैं पिछे कोई रोसी, सो मैं मूल ना पाया। मित पैज है मित बिकसै, जिस मित की पैज पावे। तुसी भी चार देखो पुत भाई, हर सतगुर पै ना वे। सतगुर परतख होदै, बह राज आप टिकाया। सब सिख बंधव पुत भाई, रामदास पैरी पाया। अंते सतगुर बोलिया, मैं पिछे कीर्तन करियो निर्बाण। जियो केसो गोपाल पंडित सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाण हर रंग गुर पावे पिंड पतल किरिया दीवा फुल हर सर पावे हर पाए हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो राम दास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो सतगुर पुरख जे बोलिया गुर सिखा मन लई रजाए जियो मोहरी पुत सनमुख होया रामदास पैरी पाए जियो सब पवै पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया कोई कर बखीली निवै नाही फिर सतगुरु आण निवाया हर गुरहे भाणा दी वड़ियाई तुर लिखिया लेख रजाए जियो कह सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो राम कली महला पंजवां शांत एक ओंकार सतगुर प्रसाद साजनड़ा मेरा साजनड़ा नित खलोयड़ा मेरा साजनड़ा जानियड़ा हर जानियड़ा नैन अलोयड़ा हर जानियड़ा नैन अलोया घट घट सोया अत अमृत प्रिय गूड़ा नाल हुवंदा लहना सकंदा सुआव ना जाने मूड़ा माया मद माता होछी बाता मिलन ना जाई भरम तड़ा कहो नानक गुरबिन नाही सूझे हर साजन सबके निकट खड़ा गोबिंदा मेरा गोबिंदा प्राण अधारा मेरे गोबिंदा
1: कृपाला मेरे कृपाला दांत तारा मेरे कृपाला दांत तारा अमरो पारा घट घट अंतर सोहनिया एक दासी धारी सुलभ सारी जी जंत लै मोहनिया जसों राखे सो सच भाखे कुरका शब्द बिचारा कहो नानक जो प्रभु को भाणा तेसी को प्रभु नारा माणो प्रभ माणो मेरा प्रभु को माणो जानो प्रभ जानो स्वामी सुगुरस जानो सुगुरस जाना सद प्रधाना अमृत हर का नामा चाख गाने सारग पाने जिनके पाग मसाना जेनी पाया तिने ध्याया सगत से का माणो कहो नानक फिर तख्त नवासी सच तसे दी बाणो मंगला हर मंगला मेरे प्रभ कै सुनिए मंगला सोहेलड़ा प्रभ सोहेलड़ा अनहतुनिए सोहेलड़ा अनाद बाजे शब्द गाजे नित नित जिसे बधाई सो प्रभ जाइए सब कुछ पाइए मरे ना वे जाई चूकी प्यासा पूर्ण आसा गुरमुख मिल निर्गुनिए कौ नानक घर प्रभ मेरे कहे नित नित मंगल सुनिए राम कली महला पंजवा हर हर त्याय मना खेन नाम सारिए राम रामा राम रमा कंठ उरधारिये उरधारा पुरख पूर्ण पार ब्रह्म निरंजनो पय दूर करता पावरता दुसे दूप पव खंडनो जगदीश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारिये बिनवंत नंग मैं संग साधु दिन सरण चतारिये चरण कमल धार जन कायासरा माल मिल भंडार नाम अंत तरा नाम नारायण दान जन के रस भोग एक नारायणा रस

तिनके हो बल जाओ, तिनकी धूड़ खोलिए संगत मेल मिलाओ, मन दिया गुरे अपने पाया निर्मल नाओ, जिन नाम दिया तिस सेव सा तिस बुलारे जाओ, जो सारे सोता सी किस बिन और न कोई, गुर प्रसादी ते समला ता तन दुख न होए, ना को मेरा किसी गई ना को न होग, आमन जान मगुचिए दुदा व्यापे रोग, अनामे उने आदमी कलर कंध ग्रंथ, वरनावे क्यों छुटिए जाहिर सात अंत, गणत बनावे अखरी गणत साचा सोए, अज्ञानी मात हीन है गुर बिन ज्ञान न होए, टूटी तंत्र बाल की वाजे नहीं मजोग, विछड़िया मेले प्रभु नान कर संजोग, तरवर काया पंख मन तरवर पंखी पंच, तत जुगे मल एक से तन कहो वास नरंच, उडे तम बेगल बेगले ताके जो कहीं, पंख सुटे पाई पड़ी अवगुण पीड़ बनी, मैं साचे क्यों छुटिए अर्गुण करमणी, आप छिड़ाए छुटिए वडाए आप धनी, गुर प्रसादी छुटिए कृपा आप करे, अपने हाथ वड़ाइया जय पावे तै दे, थर थर कंपे चीअड़ा थान मोहना होए, थान मान सचे कहे काज न फीटे कोए, थिर नारायण थिर गुरु थिर साचा विचार, सुर नर नाथे ना सुने दारा आधार, सर्वे थान सनंतरी तू दाता दतार, जय देखा एक तू अंत न पारा वार, थान सनंतर अवरिया गुर सबदी विचार, अण मंगिया दान देव सी वड्डा अगम पार, दया दान दया तू कर कर देखनार, दया करे प्रभु मेर लाए खिन मिटाए असार, नाना तू बिना तू ही दाना कह किरदान, दाग पंज दुख दलन गुरमुख ज्ञान ध्यान, तन गया वह चूरिए तन मैं चीत गुवार, तन मिरली सच संचया निर्मल नाम प्यार, तन गया तन जान दे जेरा चेरंग एक, मन दीजे सिर सिर सौंपिए पी करते की टेक, संदा तावत रह गए मन में शब्द आनंद, दुर्जन ते साजन पे पेटे गुर गोविंद, बन बन फिरती ढूंढती बस रही कर बार, सतगुर मिली मरई जन मन दुख नार, नाना करत न छुटिए गण गुण चपुर जाहे, ना तिसे न ओ है अवगुण फिर पिछाए, ना तिस ज्ञान न ध्यान है ना तिस धर्म ध्यान, वेण आवे निरपौ का कह जाना अभिमान, साक रही के अपड़ा हाथ नहीं न पार, ना साजन से रंगले किस पे करी पुकार, नानक प्रो प्रो जे करी मेले मेलन हार, जन्म छोड़ी सो मेसी गुर का हे त्योपार, पाप बुरा पापी को प्यारा, पाप लदे पापे पसारा, पर हर पाप जाने आप ना ते सोग जोग संताप, नरक भड़ंतो क्यों रहे क्यों बंके जमकाल, क्यों आवन जाना विसरे झूठ बुरा सहकाल, मन जन जाली वेड़िया पी जंजाला माहे, वेड़नावे क्यों छुटिए पापे पचे पचाहे, फिर फेरी फाई फसे गुआ फिर पिछाना अब क्या हुआ, फाता चोग चुगे नहीं पूजे सतगुर मेरे तया की सूजे, जो मछली फाती जमकाल जो मछली फाती जमजाल, गण गुण दाते मुक्त न बाल, फिर फिर आवे फिर जाए एक रंग रचे रहे ले बुलाए, एव छूटे फिर फास न पाए, बीरा बीरा कर रही बीर भय बैराए, बीर चले करे अपने बैन बिरे जल जाए, बाबल के कर बेटड़ी बाली बाले नेहे, जे लोड़े वर कामणी सतगुर से वेते, बिरलो ज्ञानी बूझणो सतगुर साच मले, ठाकुर हाथ बढ़ाइया जय पावे कह दे, बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए, ए बाणी मां पुरु की निज कर वासा होए, पन पन कड़िए कड़ कड़ भजे ठाय सारे सुसरे चाहे, सर पर सुखे पी पर पोखे समरत वे परवाहे, परम भला ने पए दवाने विण भागा क्या पाइए, गुरम ज्ञान डोरी प्र पकड़ी जन खिंचे तिन जाइए, हर गुण गाए सदा रंग रहते बोर न पुछो ताइए, पबे पाले गुरु बुझे तन करवासा पाइए, पबे पौजल मार्ग बिखड़ा मेरा सा करिए, गुर प्रसादियां पहुंचीने जीव से आए मरिए, माया माया कर्मो ए माया किसे न साथ, हंस चले तुमणो माया भूलिया मन मुठा जम जोया।

बोलरी मिल सरले सरल समणे जो प्रभु यसो तुम्हें जाने हम न जानी हर गहने हम भारत सौर दोस्त धारो हम करे प्रभु सिमरने तुम जल निध हर मानसरोवर जो सेवे सब फल ने जा नानक हर हर हर हर वासे हर देवो कर किरपने नाट नारायण महला चौथा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुरु पग रे निरवाल सब दल भंज दुख दाल हर हो निरनिहाल रहाओ हर चक्र हर आप सवारो हर रंग रंग मैल बेअंत लाल लाल हर लाल हर अपनी कृपा करी आप ग्रह आयो हम सारकी गुर की है वसीसी हम हर देखे पई निहाल निहाल निहाल निहाल हर आपते ही खबर गुर पाई मन धन आनंदो आनंद पै हर आपते सुने मेरे लाल हर लाल जा नानक हर हर मिले पै गुरतान हाल निहाल निहाल नाट महला चौथा मन मिल सत संगत सो बंती सुन सत कथा सुगवंती सब किरबिस पावल हंती हर हो चितलवंती रहो हर कीरत कालजुग विच उत्तम व्रत गुरमत कथा भजंती जिन जन सुनी मनी है जिन जन तिस जन के हो कुरबंती हर रथ कथा का जिन रस चाख्या तिस जन सब सुभूगल हंती नानक जन हर कथा सुन तिपते जब हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावे हर की हर गाल तिसको हो बल बल बाल सो हर जन है पाल पाल हर हो मेल निहाल रहाओ हर का मारा गुरु संत बतायो गुर चाल दिखाई हर चाल अंतर कपट चुकावो मेरे गुर सिखो नह कपट कमावो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाए जिन हर प्रभ जानो मेरा नाल जन नानक ओ मत हर प्रभ दीनी हर देख नीत हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नट नारायण महला पंजवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राम हो क्या जाना क्या पावे मन प्यास बहुत दर्शावे राव सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रचिए आवे कृपा करो जिस पुरख बधाते सो सदा सदा तुरते आवे जन तेरा जिस ऊपर रचिए आवे कृपा करो जिस पुरख बधाते सो सदा सदा तुरते आवे कवन जो कवन ज्ञान ध्याना कवन गुणी रुझावे सोई जन सोई निज भगतां जिस ऊपर रंग लावे साई मत साई बुद्ध सियाणप जित निमुख न पराप पितरावे सा संग लागे सुख पायो हर गुण सारी गावे देखो चाज महामंगल रूप किसान नहीं दिसता वै को नानक मूर्चा गुर लायो तै गर्भ जून कह आवे नाट नारायण महला पंजवां दो परे को अहंकार सतगुरु प्रसाद उलाणो मैं काहू न दियो मन मीर तवारो की ओर हाओ आज्ञा मान जान सुख पाया सुन सुन नाम तहारो जियो इहां उहां हर तुम ही ए गुर ते मन दड़ियो जब ते जान पाईए वाता सब कुशल खेम सब थियो सात संग नानक प्रगास्यो आन नहीं रे बियो नट महला पंजवा जाको भई तुम्हारी पीर जम की द्रास मिटी सुख पाया निसी हुमे पीर रहाओ तावत बुझानी अमृत बाणी तृपते जियो बर खीर मात पिता साजन संत मिले संत सहाय वीर खुले भरम पीत मिले गोपाला हीरे वेदे हीर विषम भय नान जस गावत ठाकुर गुणी हीर नट महला पंजवा अपना जन आपे आप उधारियो आठ पैर जन के संग वस्यो मन ते ना विसारियो रहो वरण चै नाही किस पीछियो दास कुल न विचारियो कर कृपा नाम हर दियो सहज भाए सवारियो मां बिकम अगन का सागर रिश्ते पार उतारियो फेख वेख नानक बिगतानो पुनः पुनः बलिहारियो नट महला पंजवा हर हर मन में नाम से हो कोट अपराध मिटे जिन भीतर ताका दुख न रहो रहो खोजत खोजत भयो बिरागी साधु संग लेहो सगल त्याग एक लिवलागी हर हर चरण गयो कहत मुगत सुनते निस्तारे जो जो सारन पयो सिमर सिमर स्वामी प्रभु अपना को नानक आनंद पयो नाट महला पंजवा चरण कमल संग लागी डोरी सुख सागर का परम गत मोरी रहा हो अंचला गायो जन अपने को मन विदो प्रेम की खोरी जस गावत भगत रस उपजियो माया की जारी तोरी पूरन पूर है कृपा निध मिद आन पेखो होरी नानक मेल लियो दास अपना प्रीतन कबू थोरी नट महला पंजवा मेरे मन जप जप हर नारायण कबून विस्तर मन मेरे ते आठ पैर गुण गयान राओ साधु धूर करो नित मजन सब किलो पाप गवायन पूरन पूर रह कृपा निध घट घट दिस तमायन जाप ताप कोट लग पूजा हर सिमरन तुल न लायन दोए का जोड़ नानक दान मांगे तेरे दासन दास सैन।

मानस की जात सदैव के पहचान लो। इतिहास के कुछ कु पन्ने आप सब के सामने जिन्हां विच कुर्बानियां दी कहानी है जां महापुरुषां दी बाणी है, जिन्हां विच मनुखता दा जिक्र अते इंसानियत नूं बचाउण दा फिक्र है।

सहल सरफनी बासक सेज वालुआ अठारह पार बनास्पति मालनी सिनवै करोड़ी मेघ माला पानी हारिया नाख परसेव जाचै सुरसरी सप्त समुंद जाचै घड़थली एते जी जाचै वर्तनी सो ऐसा राजा त्रे पवन धनी जाचै घर लिखत वर्ती अर्जन ध्रुव प्रहलाद अम्बरीक नारद नेजै सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बान वहेला एते जी जाचै है करी सर्व व्यापक अंतर हरी।

आलावंती हो ब्रह्म जो है मुझ ऊपर सब को पिला। सूद सूद कर मारे अठायो कहां करो बाप बीठला। मुए हुए जो मुक्त दे होगे मुक्त ना जाने।

ईद बकरीद कुल गौरे बध करह मानिय है शेख शहीद पीरा जा कै बाप वैसी करी पूत ऐसी सरी तिहूं रे लोक प्रसिद्ध कबीरा जा के कुटंब के ढेड सब ढोर टवंत फिर है अजहो बनारसी आस पासा आचार सैत बिपर करह दंडौत तिन तन रविदास दासान दासा मलार एक ओंकार सतगुर प्रसाद मृत प्यारो प्राणनाथ कमन भगत ते साध संगत पाई परम गते रहाओ मैले कपरे कहां लौ धोवो आवेगी नींद कहां लग सोवो जोई जोई जोरियो सोई सोई फ।

मन साध जना मिल हरिया कहो बल बल बल बल साध जना कहो मिल संगत पार उतरिया रहाओ हर हर कृपा करहु प्रभ अपनी हम साध जना पग परिया तन तन साध जिन हर प्रभ जानिया मिल साधु पतत उधरिया मनुआ चले चले बहु बहु बिद मिल साधु वसगत करिया ज्यों जल तंत पसारियो बदक ग्रस मीना वसगत खरिया हर के संत संत पल नीके मिल संत जना मल लहिया हौ मैं दुरत गया सब नीकर ज्यों साबुन कापर करिया मस्तक ललाट लिखिया तुर ठाकुर गुर सतगुर चरण उर धरिया सब दालद दूख पांच प्रभ पाया जन नानक नाम उधरिया कानड़ा महला चौथा मेरा मन संत जना पगरेन हर हर कथा सुनी मिल संगत मन कूरा हर रंग पेन रहाओ हम अचेत अचेत न जान है गत मित गुरु किए सुचित चितेन प्रभ दीन दयाल कियो अंगीकृत मन हर हर नाम जपेन हर के संत मिलह मन प्रीतम कट देवो ही अरातेन हर के

गुरवाक हर हर कृपा करी जगदीश्वर दुर्मत दूजा पाओ गयो सब चाक रहाओ नाना रूप रंग हर केरे कट कट राम रवियो गुपलाक हर के संत मिले हर प्रगटे उगर गए बिठिया के ताक संत जना की बहुत बहुत शोभा जिन उर तारियो हर रस कर साक हर के संत मिले हर मिलिया जैसे गऊ देख बछराक हर के संत जना मह हर हर ते जने उत्तम जनक जनाक तिन हर हृदय बास बसानी छूट गई मुश्की मुश्काक तुमरे जन तुम ही प्रभ किए हर राख ले हो आपन अपनाक जन नानक के सखा हर भाई मात पिता बंदप हर साक कानड़ा महला चौथा मेरे मन हर हर राम नाम जप कीत हर हर वस्त माया गढ़ वेड़ी गुर कै शब्द लियो गढ़ जीत रहाओ मिथ्या भरम भरम बहु भ्रमिया लुभदो पुत्र कलत्र मोह प्रीत जैसे तरवर की तुष छाया।

परचै राम रविया घट अंतर अस सिर राम रविया रंग प्रीत हर के संत संत जन नीके जिन मिलिया मन रंग रंगीत हर रंग लह ना उतरे कबहू हर हर जाय मिले हर प्रीत हम बहु पाप किए अपराधी गुर काटे कटत कटीत हर हर नाम दियो मुख औखद जन नानक पतत पनीत कानड़ा महला चौथा जप मन राम नाम जगन्नाथ कुमन घेर परे बिख बिखिया सतगुर काढ लिए दे हाथ रहाओ स्वामी अपै निरंजन नरहर तुम राख ले हो हम पापी पात काम क्रोध बिखिया लोभ लुभते काष्ट लोहो तरे संग साथ तुम वड पुरख वड अगम अगोचर हम ढूंढ रहे पाई नहीं हाथ तू परै परै अपरंपर स्वामी तू आपन जान है आप जगन्नाथ अदृष्ट अगोचर नाम तिहाय सत संगत मिल साधु पाथ हर हर कथा सुनी मिल संगत हर हर जपेओ अकथ कथ काथ हमरे प्रभ जगदीश गुसाई हम राख ले हो जगन्नाथ जन नानक दास दास दासन को प्रभ करहु कृपा राखो जन साथ कानड़ा महला चौ

सुख होत हर हरे हर हरे हरे भज राम राम राम सब सिष्ट धार हर तुम कृपाल करता सब तू तू तू राम राम राम जन नानको शरणागति देहो गुरमति भज राम राम राम कानड़ा महला चौथा सतगुर चाटो पग चाट जित मिल हर पादर बाट भज हर रस रस हर गाट हर हो लिखे ललाट रहाओ खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्थार सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट कर भेख न पाइय हर ब्रह्म जोग हर पाइय सत संगति उपदेश गुरु गुर संत जना खोल खोल कपाट तू अपरंपर स्वामी अत अगाह तू भरपुर रहया जल थले हर एक इको एक एक हर थाट तू जान है सब बिद बूझ है आपे जन नानक के प्रभ घट घटे घट घटे घट हर घाट कानड़ा महला चौथा जप मन गोविंद माधु हर हर अगम अगाधु मत गुरमत हर प्रभ लाधु तुर हो लिखे ललाधु रहाओ बिख माया संच बहु चित बेकार सुख पाइय हर भज संत संत संगति मिल सतगुरु गुर साधु ज्यों शोहे पारस मनूर भय कंचन त्यों पतत जन मिल संगति सुध होवत गुरमति सुधहादु ज्यों कासत संग लोहा बहुतरता त्यों पापी संग तरे साध साध संगति गुर सतगुरु गुर साधु चार वर्ण चार आश्रम है कोई मिले गुरु गुर नानक सो आप तरह कुल सगल तरादु कानड़ा महला चौथा हर जस गावो भगवान जस गावत पाप लहान मत गुरमत सुन जस कान हर हो किरपान रहाओ तेरे जन त्याव है एक मन एक चित ते साधु सुख पाव है जप हर हर नाम निदान उस्तत कर प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना गुर सत गुरु भगवान जिनके हृदय तू स्वामी ते सुख फल पाव है ते तरे भाव सिंध ते भगत हर जान तिन सेवा हम लाए हरे हम लाए हरे जन नानक के हर तू तू तू तू तू भगवान कानड़ा महला पंजवा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गाइय गुण गोपाल कृपा निद दुख बदारन सुख दाते सतगुर जा को भेटत होए सगल सिद्ध रहाओ सिमरत नाम मन साधार है कोट पराधी खिन महतार है जा को चीत आवै गुर अपना ताको दुख नहीं तिल सुपना जा को सतगुर अपना राखै सो जन हर रस रसना चाखै कहो नानक गुर कीनी मया हलत पलत मुख उजल भया कानड़ा महला पंजवा अरादो तुझै स्वामी अपने उठत बैठत सोवत जागत सास सास सास हर

रसना अनकबार कर बंदन संतन ऊहा चरण गोविंद जी के बस न रहाओ अनक भांत कर द्वार न पावो होए कृपाल ता हर हर त्यावो कोट कर्म कर दे न सोदा साध संगत मेहमान पर बोधा त्रिशन्ना बूजी बहु रंग माया नाम लैत सर्ब सुख पाया पार ब्रह्म जब भय दयाल कहो नानक तौ छूटे जंजाल कानड़ा महला पंजवा ऐसी मांग गोबिंद ते तैन संतन की संग साधु का हर नामा जाप।

ही या कौ सतगुर मया करे ही अज्ञान भरम बिनसै दुख डेरा जा कै हृदय बसह गुर पैरा साध संग रंग प्रभ त्याया कहु नानक तिन पूरा पाया कानड़ा महला पंजवां भगत भगतन हूं बन आई तन मन गलत भय ठाकुर।

तेरो जान हर जस सुनत उमाहियो रहाओ मनह प्रगास पेख प्रभ की सोभा जत कत पेखो आहियो सब ते परै परै ते उच्चा गहर गंभीर अथाहियो ओत पोत मिलियो भगतन को जन स्यो परदा लाहियो गुरु प्रसाद गावै गुण नानक सहज समाध समाहियो कानड़ा महला पंजवा संतन पह आप उदाहरण आयो रहाओ दर्शन भेट होत पनीता हर हर मंत्र गरड़ायो काटे रोग पय मन निर्मल हर हर औखद खायो आस्थित पय बसे सुख थाना बहुर न कतहू तहायो संत प्रसाद तरे कुल लोगा नानक लिपत नाम आयो कानड़ा महला पंजवा बिस्तर गई सब तात पराई जब ते सात संगत मोहे पाई रहाओ ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हम को बने आई जो प्रभु कीनो सो पल मान्यो एह समत साधु ते पाई सब मह रव रहया प्रभ एक है पेख पेख नानक बिगसाई कानड़ा महला पंजवा ठाकुर जियो तुहारो परना मान महत तुम्हारे ऊपर तुमरी ओट तुम्हारी सरना रहाओ तुमरी आस भरोसा तुमरा तुमरा नाम हृदय लै तरना तुमरो बल तुम संग सुहेले जो जो कहो सोई सोई करना तुमरी दया मया सुख पावो ओह कृपाल ता भौजल तरना अपै दान नाम हर पायो सिर डारियो नानक संत चरना।

नाम मंत्र सतगुरु दरडाया रहाओ। नह तृप्तानो राज जोबन धन बहुर बहुर फिर ताया। सुख पाया तृष्णा सब बुझी है शांत पाई गुण गाया। बिन बुझे पशु की न्याई भ्रम मोहे ब्यापियो माया। साध संग जम जेवरी काटी नानक सहज समाया। कानड़ा महला पंजवा हर के चरण हृदय गाए। शीतला सुख शांत मूरत सिमर सिमर नित त्याए रहाओ। सगले आस होत पूरन कोट जन्म दुख जा।

प्रतिष्ठा पैदा पाई। हवा तो उन्हें मिले रही है हर एक जगह व्यापक, उन्हें पानी की क्यों लोड़ नहीं। सप के जड़ी जहर है ना सिल्वर नाइट्रेट बहुत स्ट्रांग पॉइजन होंगी है, वो जी सप के मूह वाहगुरु ने जहर पाई है ना वो कदे भी ना समझे लोगों नू मारन नू पाई है। सप की कोई तसीर नहीं किसी नू मारन खातर कटे, जीव का कटना सुभा है। तोते नू छेड़ो वह भी डंग मारू, कीड़ी भी चढ़ के डंग मार दी है, जे कबूतर नू फड़ो वह भी चुंज मारूगा, कुत्ते नू छेड़ो वह भी चुंज मारूगा, पशु नू छेड़ो सिंग मारूगा। यह नेचर है जीवां दी। सप नू कोई पता नहीं मेरे कटन खातरे मर जूगा, ना ना ना, क्योंकि जहर उन्हें लोगों नू मारन नू नहीं रब ने दिती। देखो किन्ना साइंटिफिक है वाहिगुरू, किन्नी साइंस है। वो जिहड़ी जहर पाई है ना तालुए विच हुंदी है, जीभ विच कदे जहर नहीं हुंदी। एक छाला हुंदा, एक खाना बणिया वा सप दे तालुए च। जदों डंग मारदा है उहदे दंद वाहिगुरु ने बेरी दे कंडिया वर्गे होने, तुसीं देखी हो तो बथेरी वार मुड़मे हुंदे आ, जिवें अलसेशन कुत्ते दे हुंदे आ, बघियाड़ दे हुंदे आ मुड़मे दंद। वह एक बार जोर नाल खुलता जाने पर वो बाहर नहीं फिर निकलते। एलसेशन कुत्ता जिन्हों फल दे चढ़ाई करके छड़ दे, फिर मुगियाड़ चेर मुड़मे दंद होने। फिर सप दंद कढ़न खातर ना कि मैं दंद कढ़ लवा उल्टा होंदा हमेशा, जे सीधा रवे उहदे दंद निकल नहीं सकते मास विचों, वो करवट खाऊगा। जदे वाहिगुरू कदे ना करे ना सप डंग मारे उन्हूं उत्थों ही फड़ लो, उल्टा ना होण दो, कदे भी जहर नहीं चढ़ूगी, नोट कर लो। क्योंकि जद उन्हें उल्टा होना है ना उदों तालुए की जहर उत्थे गिरनी है जिथे डंग वजिया होया, डंग वजिया उत्थे खून निकलिया, खून विच मिलनिया ता तुहाडे जहर चढ़नी है, नहीं जहर चढ़े नहीं सकते। क्योंकि उत्थे खून चल पिया ना जख्म हो गया, जे अपनी इस चमड़ी ते सप की जहर किन्नी मर्जी गिरी जाओ तुहानू असर नहीं करूगी। जिनी भी पॉइजन है वो ता असर होगी जे ब्लड तक जाऊ। उहदे दंदां ने जख्म करता, दंद कढ़न खातर सप उल्टदा है, जदों उल्टदा है ते ओ जिहड़ी बहुत वड्डी पॉइजन है वो उत्थे उपर गिर जांदी है जख्म दे। इह चढ़दी है भाई जहर, पर वो जहर मारन खातर नहीं दित्ती। सप कदे भी जान के कदे नहीं किसे नूं कटूगा, फसिया होया कटूगा, पैर धरो जे उहनूं घेरीए छेड़िए तां डंग मारूगा। छेड़ो किसी भी जानवर नू छेड़ो ने डंग मारना ही, तो गुरसिख प्यारे ओदे अंदर जिहड़ी जहर पाई है वाहिगुरू ने वो एक साल्ट है। किसी डाक्टर तो पुछ लियो, साइंसदान तो कमिस्ट्री वाले तो पुछ लियो, वो ऐसी जहर है। जद सप साह लैंदा है ना, जद हवा उस जहर नू लगदी है, नाल दी नाल पानी होई जांदा है। अज के आखो सतनाम, देखो किन्नी साइंस बनाई है वाहिगुरू। वो साल्ट है ना जेड़ा जहर सप दे मुंह विच, ओनू हवा लगे नहीं ते पानी बनिया नहीं। ये तो तुहानू मेरे कहण दी लोड़ नहीं, मेरे नाल ज्यादे पढ़िओ। पानी ते हवा इको है, H2O इज इक्वल टू वाटर। दो हिस्से हाइड्रोजन एक हिस्सा ऑक्सीजन, दोहां नू मिला दो पानी ते दोहां पानी नू तोड़ दो, दोए भाप गैस। ओ बराबर ने उहनू जहर तां दित्ती है कि पानी तो बिना क्यों दती है तुहानू पता है, यह भी दसा मैं। रब नू पता था इनू, इनू बेचारे नू नलके ते किने जान देना है। राज के आखो सतनाम, इनू कौन खूह ते पानी पीण दऊगा, दी हड्डियां कर देणगे कठियां। देखो कैसा वाहिगुरू दयालू, जैसा कोई जीव जिथे पैदा किया तो पहला उहदा रिजक पैदा कर, उहनू पानी पीण दी लोड़ ही नहीं। हर एक जीव पानी तो बिना बच नहीं सकता, उहनू लोड़ ही नहीं। वह साह लैंदा है, नाल दी नाल उह साल्ट उहदा पानी बनाई जांदा, नाले हवा दा कम मिल गया, नाले पानी मिल गया। उहदी खुराक रोटी किथे पैदा कीती है वाहिगुरू ने, किसे सप नूं खड तों बाहर रोटी खाण नहीं जाना पैंदा। कोई लोड़ नहीं उहनूं तुहाडे दाणिआं दी, दुध दी, रोटियां दी। उहदा आहार ही वाहिगुरू।

शरणागति राखन को समरथ ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत अमृत वेला सच नाम

तुदे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई ना न जाने मेर। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई ना न जाने।

तुम वेद ग्रंथ विचार रहे हो, हर जाप न छो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है, संगत रस

और उस धार और इस अंतर स्वामी और उस धार और इस अंतर स्वामी सत्संगत मिल बुद लांज हर नामे हम

0: केवोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Speak Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

जिससे मरत जिससे मरत जिससे मरत सब के लिखना से पितरी होए उदारो तो हर हर तुम सद ही जापो ताका अंतल पारो।

सतगुरु सतगुरु तुमको होए दयाला संत संग तिरकी सतगुरु सतगुरु सतगुरु।

का पिड़ पत पर में श्री राखी भोजन की तंत्री कपड़ पत्थर में सिर राखी भोजन की तन।

तो सगली सोच पाई, दिल को सगली सोच पाई, दिल को सगली सोच पाई, गोविंद गोविंद गोविंद माई, जब ते एक साथ दिया तब ते दूर मत दूर पाई।

कहो नानक, कहो नानक, कहो नानक, कहो नानक, कहो नानक, कहो नानक जिन मनो पछाणिया, कहो नानक जिन मनो पछाणिया, परमेश्वर जा रहा परमेश्वर एक हो नानक की जिन मनो पछाणिया, तिनको सगली सोज पाई, तिनको सगली सोज पाई, तिनको सगली सोज पाई, दिल को सगली सोच पाई, कहो नानक दिल मनाओ पछाणिया, ए वाह वाह ओ वाह वाह, ओ वाह वाह ओ वाह वाह, वाह वाह ओ वाह वाह, ओ वाह वाह Oh,

0: है अपने ओ महेश बहन महेश बहन ओ महेश बहन महेश बहन प्यारे ओ महेश बहन महेश बहन ओ महेश बहन महेश बहन महेश बहन महेश बहन ओ महेश बहन महेश बहन ओ महेश बहन महेश बहन ओ महेश बहन महेश बहन
1: Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, M

चित चढ़ी। सुन हो भीर मखान लोग सवाया टल गयो, तहम तुम काम निधान वीर मन पंथी प्यो।

0: ओ तुल्यो तीर साकत संग नाहीर सुर पार पराई सिर चरे चलो चाहे बात अपन पारे ना डरे आगे औकत काट कबीर बान की
1: दादी लागरी लाठी करे पुकार मत बस परवल हार के जाए दूजी बार कबीर एक मरण से दो मोए दोए मरण से चार चार मरण से छह मोए चार पुरख दोए नार कबीर देख देख जल ढूंढिया कहूं न पाया टावर जिन हर का नाम न चेत्यो कहाँ भुलाने और कबीर संत करिए साथ की अंत करे निर्वाह हो साथ संग न कीजिए जाते हुए बना हो कबीर जग में चेत्र जान के जग में रहो समाये जिन हर का नाम न चेत्यो बांधे जन्मे आए कबीर आशा करिए राम की अवरे आसमदास नरक परे ते मानी जो हर नाम उदास कबीर सिख साखा बहुत एक ही केसो की ओर अमीत चालिय ते हर मिलन को भी ची अटको चीत कबीर कारण बपरा क्या करे जो नाम ना करे सहाये जे जे डाली पग करो सोई मुर मुर जाए कबीर अवरे को उपदेश से मुख में पर है रेत राश प्राणी रास्ते पाया करता खेत कबीर साधु की संग कराओ जा की पूछी गाओ होना अरसो होए है साथ संग न जाओ कबीर संगत साध की दिन दिन चूना हेत सागतकारी कांबरी तोए हुए न से कबीर मन मुंडिया नहीं केस मुंडाए काए जो किस किया सो मन किया मुंडा मुंड जाए कबीर राम ना छोड़िए तन तन जाए तन जाओ चरण कमल चित बीजिया रामे नाम समाओ कबीर जो हम जंत बजावते टूट गई सब तार जंत बेचारा क्या करे चले बजावन हार कबीर माए मुंड होते गुरु की जाते भरम न जाए आप दबे जाओ चौ पेट में केले दिए बहाए प्रिय जेते पाप किए राखे तले दुराए प्रगट पाए निदान साहब जा पूछे धर्म राय कबीर हर का सिमन छट के वाल्यो बहुत पटंब धंधा करता रह गया पाई रहा ना बंद कबीर हर का सिमन छट के राज जगावन जाए सरपन होए पे ओ तरे जाए अपने पाए कबीर हर का सिमन छट के अहोई राखे नार गदी होए के ओ तरे पार सहे मन चार कबीर चतराई अत कनी हार जा फिर दे माहे सूरी उपर खेलना गिरे तार नाहे कबीर सोई मुफसान है जा मुफ्ती राम देही किसकी बापरी पुत्र होए गो काम कबीर सोई कोल पली जा कोल हर खुदा चे पक्षास न उजे सौखा ठाक खुलास कबीर है के बंस दन कन लग सजा फहराए ऐ मुफ्ते पुछया पली जो हर चमर तिन दिन जाहे कबीर साहब जब गौ करो पाठ कंठ सुधाए कहू कहू को नहीं सब तो की सब देखी तो पूजा मार्ग मोती भी थे अंदर जोत बना जो दूसरी जब करेंगे तो बूढ़ा बांस कबीर का

प्रियजनों के से जाना चाहते वीर मारे कबीर चोर से भी शेर की लाल पड़े सास कबीर गुलाम मारे जो

अमर अमर वरतायो गुरु रामदास गल उचरे तय काल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसे मेरा सिर सन प्रकाशे मैं सा दिव दे दुर्त दुरंतर नासे सुख सागर पायो दंत हर मग्न उठे संजम सा संतोष शीर्ष नाम फुटे सतगुर पान मान बेदन सरयो जग जासुर बजायो गुरु रामदास काल उचरे तय पय अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो धन धन सतगुरु रामदास जन नाम दृढ़ायो नवनिद नाम धारित सिरता की दासी सह सरोवर मिलियो पुरख पेट्यो बनासी आदले पर जित लग करे सो गुरु नाम दृढ़ायो गुरु रामदास काल उचरे ते हर प्रेम पदार्थ पायो प्रेम भक्त प्रवाह प्रीत पुबली ना उठे सतगुर शब्द सा हमें सहारा रस कुटे मत माता संतोख पिता सर सह समायो जो नी संभव्यो जगत गुरु बचन करायो अवगत गोचर अमरपुर अवगत गोचर अमरपुर मान गुर शब्द उसायो गुरु रामदास काल उचरे ते जगत धारण पायो जगत धारण नाम दान भक्ते पव तारण अमृत बूंदर नाम बेसकी बिखे निवारण सह सरोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाइये तन ते जन बड़ भागे ते मुक्त पय सतगुर शब्द मान गुर परचा पायो गुरु रामदास कल उचरे तय शब्द निशान बिजायो से सदा सह चवान संतोख सराचियो सदा शील सुनाम सोहे गुर शब्द समाचरियो नाम टेक संगान बोहे अजोनियो पाले अमर सतगुर संग नवास गुरु रामदास कल उचरे तो सह सरोवर वास गुर जन को सो प्रसन्न नाम हर दिन वासे जिनको गुर सो प्रसन्न दुर्त दुरंत नासे गुर जनको तो प्रसन्न मान अवमान वारे जिनको गुर सो प्रसन्न शब्द लग भव जवतारे परचो प्रवान गुर पायो तैन सकत्यो जन्म जग श्री गुरु शरण भज काल काब भूत मुक्त सब गुरु लग सतगुर खेमा तानिया जुग जू समाणे अनपो ने जानाम एक जग भक्त गाने गुरु नानक अंगद अमर भक्त हर संग समाणे ए राजो गुरु रामदास तमु रस जाने जनक सोए जिन जानिया उन मन रस धरिया सत संतोख समाचर भरा सर भरिया अकत कथा अमरा पुरी जिसे सो पावे यो जनक राज गुरु रामदास तो जी बन आवे सब गुरु नाम एक मन जपे दृढ़ तन जन दुख पाव कत होवे जियो सतगुरु नाम एक लेव मन जपे दृढ़ तिन जन दुख पाव कहो कत होवे जियो तारण तरण के नमात्र जाको दृष्ट धारे शब्द रिद विचारी।

0: गौर कर्म गुरु गुरु गौर कर मन मेरे तारण तरण समात कर जोग समाज सब जस केरे फुन दुख नास सुखदायक सुर जो तरद ध्यान बसते नेरे पूर्व पुरख हृदय हर सिमर दुख मोह देख जग जाहि परे रे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चात गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु मुख देख करु सुख पायो हुती जो प्यास उस पान की बंशन सिद्ध कहो बिद मिलायो पूर्ण पो मन ठोर बसो रस बसन सो जो दैंग दिस तायो गोविंद बाल गोविंद पुरी साम जन तीर विवास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख करु सुख पायो समरथ गुरु से रास धरियो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जे देव चरण घन हरियो नित बस एक समान ध्यान सो कीनी कृपा हर नाम दियो जे देव चरण घन हरियो नित बस एक समान ध्यान सो नाम सुने सो तूफान डरियो पन दासो आज जगत गुरु की पन दासो आज जगत गुरु की पारस पेट परस करियो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ धरियो अब राखो दास पाक की लाज जैसी राखी लाज भक्त प्रहलाद की हर नाग सारे कर आज पुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी शेंत वस्त्र दीन बोसाज सुदामा अवदाते राख्या गंग परत बुरे ते काज श्री सतगुर सो प्रसन्न काल जुग होए राखो दास पाठ की लाज झोलना गुरु गौर गुरु गौर गुरु जप प्राणियो शब्द हर हर जपे नाम नाम निध जपे रसन ऐन सरसे सत गर जानियो पुन प्रेम रंग पाइये गुरमुखे चाहिए अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियो वचन गुर रिद करो पंच भू बस करो जन्म को लिद्रो द्वार हर मानियो जो ता सब सुखे तुत तुम बचो गुरु गौर गुरु गौर गुरु जप प्राणियो गुरु गौर गुरु गौर गुरु जप सत कर अगम गन जान दान हर मान करो ध्यान ऐन करो वचन गुर हृदय धर पुन गुरु जल बिमल था मजन करो संत गुरु सिख तरो नाम सच रंग सार सदा निर्वय निरंकार निरपो जपे प्रेम गुर शब्द रस कीर्त दृढ़ भक्त हर मुग्ध मान भ्रम तजो नाम गुरमुख भज गुरु गौर गुरु गौर गुरु जप सत कर गुरु गौर गौर करो गुरु हर पाइये उदत गौर गैर गंभीर ग्रंथ हर नाम नाग हीर मन मिलत लिव लाइये पुन गुरु परम सरस करत संचन परस मै गुरमत हिरन शब्द गुर त्याइये अमृत प्रवाह छिड़कंत साधुआर जस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाइये नाम निर्वाण निधान हर तरो गुरु गौर गुरु करो गुरु हर पाइये गुरु गौर गुरु गौर गुरु जप मन रे जाकि सेव सेव सिद्ध साधक सोर सोर गण करे तेतीस गौर बचन सुन कान रे हुन तरे ते संत हित भक्त गौर गौर कहो तरियो प्रहलाद गौर मिलत मन जान रे तरे नारदास तन काद हर गुरमुखे तरे एक नाम लागत जो रस आन रे दास बेंत कहे नाम गुरमुख लहे गुरु गौर गुरु गौर गुरु जप मन रे श्री गुरु साहेब साहब उपर करी कृपा सा जोग तेन ध्रु पर श्री प्रहलाद भक्त उदरियम हस्त कम माथे पर करिय अलक रोग जी लख्या न जाई साधक साधक सिद्ध सब सुनाई गुर के भजन सब जी धारो मानस जन्म दे निसारो गुर जहाज के गुरु गुर बिन तरिया न कोये गुर प्रसाद प्रभ पाइये गुर बिन मुक्त न होये गुरु नानक निकट बस बनवारी तन लैणा था जो जल भाई लैणे पन धर्म का गिया अमरदास भले को दिया तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो हर का नाम अखे निध अप्यो अप्यो हर नाम अखे निध चौ जोग गुर सेवा कर फल लयन मंदे जो चरण सन सुख पावे परमानंद गुरमुखयन प्रतक दे पार ब्रह्म स्वामी आदरूप वरण सदगुर गुर सेव लख गत जाकी श्री राम दा तारण करणम जे अमृत बचन बाणी साधु जन जपे कर बेचे पिचाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सब संसार संसार सब गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गते जीते जम लोक पत जे प्राणी हर जन सेव गुर ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कर मोन बंसे जाकी शरण सत गुर गुर से लख गत जाकी श्री राम का तारण करण संसार गम सागर कुला हर नाम गुरु मुख पाया जग जन्म मरण पगा ए ही आई है प्रतीत प्रतीत ये आई जन जन के तनको पदवी अच पही तज माया मोलो वर लाल से काम क्रोध की वृथा गई अब लोग क्या ब्रह्म परम सब छुट गया देव दृष्ट कारण करण सतगुर गुर सेव लख घट जाकी श्री राम दा तारण करण प्रताप सदा गुरु का घट घट प्रदास भया जा जन के एक पड़े सुने गावे पुरभासे करे स्नान स्नान करे पुरभा शुद्ध मन गुर पूजा विद सहित करें कंचन तन होए पार्स कंचन तन होए परस पार्स को जो स्वरूपी ध्यान धरें जग जीवन जगनाथ जग थल में रहा पूर्व विद मरने सतगुर गुर सेव लख घट जाकी श्री राम दा तारण करण जिनो बार ने तिल त्रुता जानी ते जीव का ते बचा तेन तरियो समुंदर दुखे नेक मैं जल हर बिंब जुगत जोग रचा कुंडली सुरजी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहेब सब उपर मन बच क्रम से भी सचा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कमल नैन मधुर बहन कोर सैन सोंग सब सैत मां जसो जिस दाई का कमल नैन मधुर बहन कोर सैन संग सोग कैत मां जसो जिस दाई पात खाए जियो देख रूप अत अनूप मो मां मग पई किकनी शब्द चंदकार खेल पाहे जियो काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेर सके ईस ब्रह्म ज्ञान ध्यान करत ये चाहे जियो सत साह श्री निवास आद पुरख सदा तुई वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो राम नाम परम धाम शुद्ध बोध निरीकार बेस मार सरबर कौ काहे जियो सुथार चेत भक्त हित पेकत करियो हर नाथ हरियो नक बिधार जियो संक चक्र गदा पद्म आप की ओ छदम अपरमपुर पार ब्रह्म लखे कौन काहे जियो सत साज श्री निवास आद पुरख सदा तुई वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो पीत बसन कुंद दसन प्रिया सहित कंठ माल मुक्त शीश मोर पंख चाहे जियो देव जीर बड़े तीर धर्म अंगला को गम खेल किया अपने अशाहे जियो अकत कथा कति न जाए तीन लोक रिया समाए सुते सिद रूप तरियो सान कैसा ही जियो सत सा श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोविंद जियो भले चरण सबल मन भगत भले चरण सबल मलन भगत फलन कानकूर नेक लंक बजी डंग चढ़ दल गोविंद जियो राम रमन दुर्त दमन सगल पवन कुशल करण सरपूत्या भी द्वार देव सहक मुख गुनिंद जियो जन्म करम अश का चोबरा जमुना के कूर खेल खेलो जन गेंद जियो नाम सारिये तार तजब कार मन गयंद सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोविंद जियो श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो गुर क्या मान जन दान सच जान मंत्र निस्बत रोय कल्याण लहे परम गत जियो काम करो लो मोह जन जन सो शर तो होमे का फंधकार सात संग रत जियो देह गे तेरे स्ने चित बलास जगते चरण काम सदा सियो दृढ़ता कर मत जियो नाम सारी ए तार तजब कर मन गय अंद श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो सेव कै भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभ सदा सलाम कह न सके कहू तू कलता ब्रह्मा विष्णु सिरे ते गंत तिन कयो पयो पया मन मद का चौरासी लख जन पाई रिश्क दिया सब हूँ को सदका सेव कै भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका वाह वाह का बड़ा तमाशा आपे हसे आप ही चतुए आपे चांद सूर बरगासा आपे जल सम आपे किया कट कड़वासा आपे नारे आपे फुल नारी आपे सारे आप ही पासा गुरमुख संगत सभी बिचारो वाह वाह का बड़ा तमाशा किया खेल बड़ मेल तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना तू जल तल गगन प्याल पूरिया अमृत दे मीठे जाके बचना माने ब्रह्मात गुरु दत्त काल का काल निरंजन रचना गुरपुर सात पाइये पुरमार्थ सत संग सेती मन खचना किया खेल बड़ मेल तमाशा वाहेगुरु तेरी सब रचना। अगम अनंत याद आद जस कोई न जाने, सिबरां तर ध्यान ते जस तेज बुखाने, निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई, पंजन गण सम्राट तरन तरन प्रस होई, नाना प्रकार जन जाकियो जन मथरा रसना रसे, श्री सतनाम करता पुरख गुरु रामदास चिते वसे, गुरु सम्राट गए करिया त्रोब समाप समारन को, पुन त्रम तुजा फिर सदा गुपुंज तरंग नवारन को, मथरा जान जान कई जी सासो और कछु न बिचारन को, हर नाम बहुत बड़ो कल में पव सागर पार उतारन को, संतत ही सत संत संग सरंग रते, जस गावत है त्रम पन तरियो तर नीतर, आप रहे ले उतारन तावत है, मथरा पन पाग भले उनके, मन इष्ट ही फल पावत है, रव के सद को तैन सास खान जो चरण, गुरु चेत लावत है, निर्मल नाम सदा परपूर्ण सब तरंग पर रस दिन्यागर, गैर गंभीर था अत बढ़ सुबर सदा सभ्य रसनागर, संत मनार करे कंतूल तिन जम त्रास मिट्यो दो कागर, कल जग दुर दूर कर दे तो दर्शन गुरु सब सुख सागर, जा को मन त्यां करे फिर सगल जोग कबू को पावे, आत्म प्रगात को वेद वाणी सहद ब्रंच जस गावे, जा को से मोन गए ना तजात संभलास को, जाको जोगी चति शिव सात अनेक तप जाता जूट पेकिए फिर तदास को, सोतन सतगुरु सुख पाए कृपा धारी जी, नाम की बढ़ाई गई मां नाम की बढ़ाई गई गुर रामदास को, नाम दाम ध्यान अंतरगा तेज पुंज ते लोक पुरगा से, देख दर छुट को ब्रह्म पाइत सुख पर हर सुख सहज बुगा से, सेवक सदा अतलुप
1: गुरु रामदास तारियो संसार माया मद मोहत, अमृत नाम दियो समरथ, पुन कीर्तवंत सदा सुख संपत, हृद और सिद्ध ना छोड़ सत, दान बड़ो अतवंत महाबल, सेवक दास कहियो एह तत, ताहि कहां परवाह काहू की, जान कह बसीस धरियो गुर हथ, तीन भवन भरपूर रहियो सोई, अपन सरस कियो ना जगत कोई, अपने आप ही उपायो सुर नारे असुर अंत नहीं पायो, पायो नहीं अंत सुर असुर नार, गण गंधर्व खो जंत फिरे, अविनाशी अचल अजोनी संभव, परखो तुम अपार परे, करण कारण समरथ सदा सोई, सर्ब जी मन त्यायो, श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं, तय हर परम पद पायो। सतगुर नानक भगत करी एक मन तन, मन धन गोविंद दियो, अंगद अनंत मूर्त निज धारी, अगम ग्यान रास रस्यो हियो, गुर अमरदास करतार कियो वास, वाह वाह करत आयो, श्री गुरु रामदास जय जय जग मह, तय हर परम पद पायो। नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा, पुभ भागत हर के जो गुण, अम्बरीक जय देव तरलोचन नामा, अवर कबीर भणंग तिन को अवतार पायो, कल पिंतर जास जगत परछायो, श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं, तय हर परम पद पायो। मनसा कर समरंत तुझे नार, काम क्रोध मिट्यो जो तिण, बाचा कर समरंत तुझे तिन, दुख दारिद्र मिट्यो जो किण, कर्म कर तो दर्श परस सपारस, साल सार बल भट जस गायो, श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं, तय हर परम पद पायो। जय सतगुर सिमरंत नयन के, तिमर मटै खैनो, जय सतगुर सिमरंत हृदय हर ध्यान नाम दिनो दिन। जय सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे। जय सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निध पावे। सोई रामदास गुर बल भण मिल संगत धन धन करहु। जिहे सतगुर लग प्रभु पाईऐ सो सतगुर सिमरो न रहो। जिन शब्द कमाई परम पद पायो सेवा करत न छोड़े उपास। तांते गौ हर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दारिद्र अंधियार को नास। काव कीरत जो संत चरण मुड़ लग गए तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास। जिव अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर अमरदास कह गुर रामदास। जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निसबासुर हर चरण निवास। ताते संगद सगन पाई पौ मन है तम तुम मलियागर प्रगट सुबास। ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਬੀਰ ਤਰਲੋਚਨ ਤਰਲੋਚਨ ਨਾਮ ਲੈ ਤੁਪਜਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਹੇ ਪਿਖਤ ਅਤ ਹੋਏ ਰਹਾਸ ਮਾਨ ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਨੋ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿਲਾਈ। ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਇਓ ਸਾਇਰੂ ਤੈਨੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀ ਨੀਵ ਰਖਾਈ। ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਸੰਗ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਇਓ ਸਾਇਰੋ ਤੈਨੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕਿੰਨੀ ਵਰਖਾਈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜੀਹੀ ਕਛ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਛੋਡੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਗਲ ਤਾਰ ਸ਼ਕਲ ਤਾਰ ਨ ਕਹੋ। ਅਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਬਡਾਈ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੁੱਲੇ ਸੁਤਧਾਰਾ ਸਿਉਂ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇਹ ਮਿਲਾਂਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਮੋਹ ਬਾ ਮਲ ਬਿਵਾਸ ਕੀਓ ਕਾਮ ਗਹਿ ਕੇਸ ਪਛਾੜਿਓ। ਕ੍ਰੋਧ ਖੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਲੋਭ ਅਪਮਾਨ ਸਿਉਂ ਝਾੜਿਓ। ਜਨਮ ਕਾਲ ਕਰ ਜੋੜ ਹੁਕਮ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋ ਮੰਨੈ। ਪਵ ਸਾਗਰ ਬੰਧਿਓ ਸਿੱਖ ਤਾਰੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨੈ। ਸਿੱਖ ਅਤਪਤ ਸਾਚੋ ਤਖਤ ਜੋਗ ਭੋਗ ਸੰਜੋਤ ਬਲ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚ ਸਲ ਭਾਣ ਤੂੰ ਅਟਲ ਰਾਜ ਭਗ ਦਲ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਆਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਰ ਨਾਰ ਉਦਾਰਨ ਸੋਰ ਨਾਰ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਸੇਵੰਤ ਧੁਰਾਂ ਤਰ। ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਅਨਾਦ ਕਲਾ ਧਾਰੀ ਤ੍ਰੈਲੋ ਨਿਗਮ ਨਿਗਮ ਉਦਾਰਣ ਉਧਰਣ ਜਰਾ ਜੰਮੈ ਆਰੋ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਥਿਰ ਥਪਿਓ ਪਰਗਾਮੀ ਤਾਰਨ ਤਾਰਨ। ਅਗਿਆਨਤਕ ਬਧੈ ਨਾ ਸਲ ਕਾਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇਰੀ ਸ਼ਰਨ। ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਿਮਰੰਗ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਚਲ ਬਨਾਸੀ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਨਾਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਧ ਤਾਰੰ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰੰ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰ ਕੀਓ ਪਰਗਾਸਾ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ। ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ ਕਲ ਜੋੜ ਕਾਰ ਸੁਜਸ ਵਖਾਣਿਓ। ਭਗਤ ਜੋਗ ਕਹੋ ਜੈਤ ਵਾਰ ਹਰ ਜਨ ਕੋ ਪਾਇਓ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸਿਓ ਹਰ ਰਸਨ ਬਸਾਇਓ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਲਾਗ ਸਤਿਗੁਰ ਪਦ ਪਾਇਓ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉੱਤਰ ਆਇਓ। ਵਡਭਾਗੀ ਉਨ ਮਾਨਿਓ ਰਿੱਧ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਇਓ। ਮਨ ਮਾਣਕ ਸੰਤੋਖਿਓ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ। ਅਗਮਾ ਗੋਚਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸਾਇਓ। ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਨਪੌ ਠਹਿਰਾਇਓ। ਜਨਕ ਰਾਜ ਵਰਤਾਇਆ ਸਤਿਯੁਗ ਆਲੀਣਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਪਤੀਜ ਪਤੀਣਾ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਨੀਵ ਸਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਲੀਣਾ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਪਰੰਪੁਰ ਬੀਣਾ। ਖੇਲ ਗੂੜੋ ਕੀਓ ਹਰ ਰਾਏ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰਿਓ। ਬਿਮਲ ਬੁੱਧ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਾਣਿਓ। ਅਜ ਉਨੀ ਸੰਭਵਿਓ ਸੋ ਜਸ ਕਲ ਕਵੀਅਣ ਬਖਾਣਿਓ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਵਰਿਓ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਵਰਿਓ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਵਾਨ ਸਦ ਜੀਵਨ ਅਰਜੁਨ ਅਮੋਲ ਅਜੋਨੀ ਸੰਭਾਉ ਪੈ ਭੰਜਨ ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰ ਅਪਾਰ ਅਨੰਤ ਪਾਉ ਅਗਹਾਂ ਗਹਿਣ ਬ੍ਰਹਮ ਭ੍ਰਾਂਤ ਦਹਿਣ ਸੀਤਲ ਸੁਖ ਦਾਤਉ ਅਸੰਭਉ ਦਿਵਿਓ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬਿਦਾਤਉ ਨਾਨਕ ਆਦਿ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਅਮਰ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਸਮਾਇਓ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਮਿਲਾਇਓ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰਜਸ ਜਗ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਪਾਗ ਜੁਗਤ ਸਿਵ ਰਹਿਤਾ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਓ ਵਡ ਭਾਗੀ ਨਿਭ ਲਾਗੀ ਮੇਦਨ ਪਾਰ ਸਹਿਤਾ ਪੈ ਭੰਜਨ ਪਾਰ ਪੀਰ ਨਿਵਾਰਣ ਕਲ ਸਹਾਰ ਤੋਹੇ ਜਸ ਭਗਤਾ ਕੁਲ ਸੋਢੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਅਰਜੁਨ ਹਰ ਭਗਤਾ ਧਰਮ ਧੀਰ ਗੁਰਮਤਿ ਗੰਭੀਰ ਪਰ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਣ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਹਰ ਸਮ ਉਧਾਰ ਅਹੰਮੇਵ ਨਿਵਾਰਣ ਮਹਾਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮਨ ਚਾਉ ਨ ਹੁਟੈ ਸਤਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਨਾਵ ਨਾਦ ਨਿਧ ਨਾਨਕ ਹੁਟੈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਸਰਬਮੈ ਸਹਿ ਚੰਦੁਆ ਤਾਣਿਓ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਰਾਜ ਜੋਗ ਰਸ ਜਾਣਿਓ ਭੈ ਨਿਰਭਉ ਮਾਣਿਓ ਲਾਖ ਮੈਂ ਅਲਖ ਲਖਾਇਓ ਗੋ ਅੰਗਮ ਅਗਮਾ ਗੋਚਰ ਗਤ ਗੰਭੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚਾਇਓ ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਪਰਮਾਣ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜੋਗ ਕਮਾਇਓ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰ ਧਨ ਅਪਰ ਸਾਰ ਸੁ ਪਰ ਪਰਾਇਓ ਗੁਰ ਗਮ ਪਰਮਾਣ ਅਜਰ ਜਰਿਓ ਸਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਇਓ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਨਿਜ ਪਾਇਓ ਅਮਿਓ ਰਸਨਾ ਬਦਨ ਬਰ ਦਾਤ ਅਲਖ ਪਾਰ ਗੁਰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦ ਹਉ ਮੈਂ ਨਿਵਾਰਿਓ ਪੰਚਾਹਰ ਨਿਧਲਿਓ ਸੁਨ ਸਹਿਜ ਨਿਜ ਕਰ ਸਹਾਰਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਲਾਗ ਜਗ ਉਧਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਇਓ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਜਨ ਕਹਿ ਕਲਸ ਦੀ ਪਾਇਓ ਸੋਰ ਠੇ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਨ ਪਾਰਥ ਚਾਲੈ ਨਾਹੀਂ ਨੇਜਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਿਓ ਭਵ ਜਲ ਸਾਇਰ ਸੇਤ ਨਾਮ ਹਰੀ ਕਾ ਬੋਧਾ ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਨ ਹੇਤ ਨਾਮ ਲਾਗ ਸਵਾਰਿਓ ਭਵ ਜਲ ਸਾਇਰ ਸੇਤ ਨਾਮ ਹਰੀ ਕਾ ਬੋਧਾ ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਨ ਹੇਤ ਨਾਮ ਲਾਗ ਜਗ ਉਧਰਿਓ ਜਗਤ ਉਧਾਰਨ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੈ ਪਾਇਓ ਅਬ ਨਾਹੀ ਅਬਰ ਸਰ ਕਾਮ ਬਰ ਅੰਤਰ ਪੂਰੀ ਪੜੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਰਾਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਰ ਕੀਓ ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਮੈ ਦੀਓ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਦਰ ਪਰਸ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕਹਿ ਮਥੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਹਿਣ ਮੂਰਤ ਪੰਥ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਭਿਖੋ ਨੈਣ ਸਤ ਰੂਪ ਸਤਨਾਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧਰਿਓ ਔਰ ਆਦਿ ਜੁਗਾ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਪਰਦਖ ਲਿਖਿਓ ਅਛਰ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋਤ ਜਗਮਗੈ ਤੇਜ ਭੂ ਮੰਡਲ ਛਾਇਓ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਸ ਪਰਸ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਇਓ ਭਨ ਮਥੁਰਾ ਮੂਰਤ ਸਦਾ ਸਿਰ ਲਾਈ ਚਿੱਤ ਸਨਮੁਖ ਰਹੋ ਕਲਯੁਗ ਜਹਾਜ਼ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਲਗ ਬੇਤਰੋ ਜੇ ਤੇਹ ਜਨ ਜਾਚੋ ਜਗਤਰ ਪਰ ਜਾਨੀਅਤ ਬਾਸੁਰ ਰਾਇਣ ਬਾਸ ਜਾ ਕੋ ਹਿਤ ਨਾਮ ਸਿਉ ਪਰਮ ਅਤੀਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰੰਗਿਓ ਬਾਸਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੈ ਜਾਨੀ ਦੇਖੀਅਤ ਧਾਮ ਸਿਉ ਅਪਰ ਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਸਿਉ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਗਿਓ ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ ਰਾਸ ਨਾਹੀ ਆਰੇ ਕਾਮ ਸਿਉ ਮਥੁਰਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬਮੈ ਅਰਜੁਨ ਗੁਰ ਭਗਤ ਕੈ ਹੇਤ ਪਾਈ ਰਹਿਓ ਮਿਲ ਰਾਮ ਸਿਉ

वही सदा आनंद विवेक रहे, दुख सुख एक समान, तिन्ना नदरी को आया सब आत्म राम पछाण। मनमुख बालक बिरद है, मनमुख मालक बालक बिरद समान है, जिन्ना अंतर हर सुरत नाही, बिच हउमै कर्म कमाम दे, सब धर्म राय कह जाई, गुरमुख अच्छे निर्मल ही, गुर कै शब्द सुभाई, उन्ना मैल पतंग न लग गई, जे चलन सतगुर पाए, मनमुख जूठ न उतरै, जे सत होवन पाए, नानक गुरमुख मेलियन गुर कै अंक समाए, बुरा करे सो कहा सिजै, अपने रोह आपे ही धजै, मनमुख कमला रगड़ै लुजै, गुरमुख होए ते सब कै सुजै, नानक गुरमुख मन स्यों लुजै, जिन्हा सतगुर पुरख ना सेवियो, शब्द न कीतो विचार, वे मानस जूना अखियन पशु ढोर गवार, उन अंतर ज्ञान ना

ब्रह्मन आनंद बड़भागी हर पाया पूर्ण परमानंद जन नानक राम सलाहया बहुड़ नमन तन भंग मूह प्रिया सोनेह क्या सज्जन मिले प्यारिया हों टंडे दी तैन सज्जन सच सवारिया सतगुर मैंडा मित है जे मिले ताई मन वारिया देंदा मूह पैर दास हार सज्जन सरजन हारिया नानक हों पैर भुली अपना सतगुर नाल दिखा लिया हों खड़ी निहाली बंद मात मूह सज्जन आवे को आण मिलावे अज

मैं प्रीत का भई नानक होए हार, नानक हर होए दयाल, ता गुरपुरा में लावे अंतर जोर हो मैं तन माया, कूड़ी आवे जाई सतगुर का फुरमाया, मन ना सकी दुतार तरिया न जाई, नजर करे जिस अपनी सो चले सतगुर पाई, सतगुर का दर्शन सफल है जो इच्छा सो फल पाई, जिन्नी सतगुर मनिया हो तिन कै लागू पाई, नानक दा का दास है जे अनदन रहे लिव लाई, जिन्ना प्री प्यार बिन दर्शन क्यों तृप्ति है, नानक मिले सुभाई गुरमुखे मन रहसी है, जिन्ना प्री प्यार क्यों जीवन फिर बाहरी, जान सोह देखन अपना ता नानक जीवन पी हरी, जिन्ना गुरमुख अंदर नेह तै प्रीतम सच लाया, रातियां तै देह नानक प्रेम समाया, गुरमुख सची आस की जित प्रीतम सचा पाईऐ, अनदन रहे आनंद नानक सह समाईऐ, सचा प्रेम प्यार गुरपुरे ते पाईऐ, कभू न होवै भंग नानक हर गुण गाईऐ, जिन्ना अंदर सचा नेह क्यों जीवन प्री बिहूणिया, गुरमुख मिले आप नानक चिरी विछुणिया, जिन जिन का प्रेम पर प्यार तो आपे लाया कर्म कर, नानक लिहो मलाई मैं जाचक दीजै नाम हर, गुरमुख हसै गुरमुख रोवै, जे गुरमुख करै सोई भगत होवै, गुरमुख होवै सो करे विचार, गुरमुख कर नानक पावै पार, जिन्ना अंदर नाम निधान है गुरबाणी विचार, जिन के मुख साधु चले उजले तसच दरबार, तैन बहिंदियां उठदियां कदे ना विसरै, जे आप बख्शे करतार, नानक गुरमुख मिल रहे, नानक गुरमुख मिले ना बिछड़े, जे मेले सिरजनहार, गुरपीरा की चाकरी महाकरड़ी सुखसार, नजर करे जिस अपनी तिस लाए हित प्यार, सतगुरु की सेवा लग्या भौजल तरै संसार, मन चिंदिया फल पाए सी अंतर विवेक विचार, नानक सतगुर मिलिया प्रभ पाई है, सब दुख निवारण हार, मनमुख सेवा जो करे दूजे पाए चित लाए,

वीर अष्टपुत्र श्री राग के गोंड कम अमीर अष्टमेघ राग वै गावे पंचो संग बरंगन लावे सोट गुण मलारी तुनी पुन गावे आसा गुन गुनी ऊचे स्वर सुओ पुन कीनी मेघराज स्यों पंचो चीनी बैरा तर गज तर के दारा जबली तर नटी।

ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाह। श्री भगवती जी की पातशाह दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लईं ध्याए। फिर अंगद गुरदे अमरदास रामदास हुए सहाई। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याई है जय जिठां सब दुख जाई। तेग बहादुर सिमरियां घर नानक दा वै धाई सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियों की आत्मक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ की दर का ध्यान धर के खालसा जी साहब बोलो जी वाहिगुरू जी। पंजा प्यारियां चौहान साहबजादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपया वंड छकिया देवी चलाई तेग वाही देख के अनिठ कीता तिन्हां प्यारा सच्चारा की पवित्र कमाई का ध्यान धर के बोलो जी वाह। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत असीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े दानारे नाल चरवाए गए गुरुद्वारा की सेवा लिए कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारे सिखी केसा सुहासा संघ निभाई तिना की पवित्र कमाई का ध्यान करके बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारा का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू वाहिगुरू जी। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू जतावे जतावन कसद कसर सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहब तहां तहां रचा रहा देख देख फतेह बिरद की पै पंथ की जी। श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी वाहिगुरू। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दान सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरू। सिखां दा मन नीवा मातु जी मत कर आखा वाहिगुरू हे अकाल पुरख अपने पांत ते सदा साई दातार जी श्री ननकाणा साहिब जी गुरुद्वारा गुरधामां दी जिन्हां तों पंथ नूं छोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जी। हे निमाणे दे मान सतगुरु ने ताणा ताणे ओटां दी ओट सच्चे पिता धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी दे हजूर सोहणे पावन चरणा कमलां विच अरदास बेनती है। आप जी दी बड़ी महान कृपा होई महान कृपा सदका मेरी पीरी दिवस नूं मुख रखदिआं होइआं अते बाला प्रीतम धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी आप जी के प्रकाश पुरब की खुशी नूं मुख रखदिआं होइआं समूह गुरद्वारा साहब वैस्टर्न सिंह सभा की प्रबंधक कमेटी वालों संगतां दे सहयोग नाल परसों दे दिन तों लै के आप जी की रब्बी बाणी दे श्री अखंड पाठ साहब प्रारंभ करवाए गए सन। पातशाह जीओ आप जी के प्यारे बच्चों ने प्रेम सहित वारी वारी गुरबाणी पढ़न की सेवा की गुरु के लंगरां भी सेवा की पातशाह जी कृपा करनी सेवा थाएं पाउणी नाम दियां दातां बख्शिश करनी बाणी शुद्ध पढ़न का बल बख्शिश करना हथी किरत करन दा सेवा करन दा बल बख्शिश करना जीओ आशा भावना पूरियां करनियां दर घर तों गुरसिखी जी नूं बख्शिश करना जीओ आने वाला समावी दे हुक्म अंदर सुख दा अतीत करना दाता जीओ आप जी की मेहर सदका सच्चे पातशाह जीओ दर घर के प्रीतवान भाई हरभजन सिंह जी जौल बीबी रजिंद्र कौर जौल के परिवार वालों तिने दिन देगों की सेवा की गई सच्चे पातशाह कृपा करनी सेवकों की की हुई सेवा थाएं पाउणी जी आने वाला समा आप जी के हुक्म अंदर सुख दा अतीत करना तंदुरुस्ती चढ़ती कला बख्शिश करनी भाई बहादुर सिंह रंधावा परिवार को चढ़ती कला नाम दी दातां बख्शिश करनियां जी ओ परमजीत कौर मल्ली परिवार को चढ़ती कला नाम दी दातां बख्श के अपने चरणों के नाल जुड़ के रखना जी बीबी कुलजीत कौर के परिवार को चढ़ती कला नाम दी दातां बख्श के उच्चा सुचा जीवन बख्शिश करना जी ओ भाई मखण सिंह संघेड़ा परिवार को चढ़ती कला नाम दी दातां बख्श के नाम दी नाम दी सोझी बख्शिश करनी बाणी बाणी का प्यार बख्शिश करना सुरजीत कौर जी के परिवार को चढ़ती कला नाम की दात बख्श के अपने चरणों के नाल जोड़ के रखना परिवारों में प्यार सुहाग तंदुरुस्ती बख्शिश करनी हुई सुख शांति वरतानी जी ओ दसा नौह की किरत कमाई कौर का नाम जपण का वंड के छकन का बल बख्शिश करना जी ओ भावनावान पूरिया करनिया इस वेले आप जी दख्शिया दातों के समूह संगतों वालों आप जी ने सुंदर पछाके भेटा किए गए आप अंगीकार करने सेवकों ने पढ़ते कजने संगतों वालों अते भाई हरभजन सिंह जी के परिवार वालों बख्शिया दातों के उत्कते हावल कड़ा प्रसादी देख सज के हाजरा दर प्रवान होया प्रसाद प्यारी संगत में वरते जो जी सके आप जी का पावन पवित्र नाम जपे संगतों की प्रेम की भेटा प्रवान करके लेखे में हाजरी लाने जी हो इस वे आप जी कृपा करो हुक्म की दात बख्श के कीर्तन दीवान आरंभ कर आग्ञा बख्शो जी सही प्यारे मेल कराने जिन्हें मिलया पवित्र नाम जता वै नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत दोहरा आ गया भई अकाल की तबे चलायो सब सिखन को हुक्म है
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ

0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। परम सत्कार यो गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु फतेह परवान करो जी। गज के बोलो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज आपा बाला प्रीतम श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी का प्रकाश पूरब बड़ी श्रद्धा नाल मना रहे हाँ। श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी का प्रकाश 7 जुलाई 1656 नू श्री गुरु हर राय साहिब जी अते माता कृष्ण कौर जी दे घर होया। आप जी दे वड्डे भरा राम राय जी सन। राम राय जी ने औरंगजेब दे दरबार विच गुरबाणी दी पंक्ति मिट्टी मुसलमान की नू बदल के मिट्टी बेईमान की बोल के बेअदबी कीती। इस करके गुरु हर राय साहिब जी ने नाराज होके अपने ही पुत्र नालों रिश्ता तोड़ लिया अते अपने छोटे पुत्र हरकृष्ण जी नू 5 साल की उम्र विच अक्टूबर 1661 नू गुरता गद्दी दे दित्ती अते गुरु बना के नमस्कार कर दित्ती। गुरु हरकृष्ण जी ने कीरतपुर साहिब विच रोपड़ दे राजा राम नू दरबार विच आउण तो रोक दिता क्योंकि राजा राम अपने घर जमदियां कुड़ियां नू मार दिंदा सी। राजा जय सिंह जी ने अपने दीवान पारस राम नू गुरु जी नू दिल्ली लियाउण लई भेजिया। राजा जय सिंह दी बेनती मन के गुरु जी दिल्ली जाण लई तैयार हो गए। संगत समेत गुरु जी अंबाले कोल पंजो खारे पहुंचे। इत्थे गुरु जी ने पंडित लाल चंद दा हंकार तोड़िया अते गुरु जी छज्जू चिवार तो गीता दे अर्थ करवाए। दिल्ली जाके राजा जय सिंह दी पथरानी दी पहचान कीती। दिल्ली विच चेचक दी बीमारी फैल गई। गुरु जी ने दिन रात रोगियां दी संभाल कीती अते आप भी चेचक दी बीमारी दा शिकार हो गए। तेज बुखार रहन करके शरीर ते निशान पै गए। गुरु जी ने संगत नो कोल बुला के बाबा वकाले शब्द कहा अते 3 मार्च 1664 नू ज्योति जोत समा गए। आप जी दी संसारक यात्रा 7 साल 8 महीने अते 19 दिना दी सी। इस स्थान ते गुरुद्वारा बाला प्रीतम साहिब बनिया होया है। गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे चरणा विच साडी कोट कोट नमस्कार है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

कहा बुद्ध प्रभ तुष हमारी बरन सके महिमा ज्यो तिहारी धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जियो। सर्वर हंस

हर पहनन नाम भोजन पीजा नाम रंग नाम चोज तमाशे नाव नानक कीने भोगा जियो नाव नानक कीने भोगा जियो अमृत रस हर गुर के पिया धन गुरु गोद।

डॉक्टर अमली सूफिया, डॉक्टर अमली सूफिया, ये डॉक्टर ये सूफिया, डॉक्टर अमली सूफिया।

हाजिर हाल लिखियन हाजिर हाजिर हाल लिख गैर गैर हाजिर गैर लाए गैर गैर हाजिर लाए गैर हाजिर गैर हाजिर लाए गैर हाजिर गैर हाजिर लाए साथ शादी साथ शादी चौकी आए पाटे चौकी आए पाटे

सूखी सब प्यावन लाए, तेल प्याले अमलिया, तेल प्याले अमलिया, तेल प्याले अमलिया, सूखी सब प्यावन लाए।

मन लेखन का एक काल मरण पूर है पूरब लेखन कर्म पूर है पूरब लेखन का कर्म देखो सेवा पर दान देखो सेवा पर दान।

लख लख वेद प्राण कीर्तन चूर है, लख लख वेद प्राण कीर्तन चूर है, परच बक्षर प्रवान चरना तूर है, परच बक्षर प्रवान चरना तूर है।